0: आ जाता है, क्योंकि वो अंदर का शख्स है। उसने कहा कि सबसे ज्यादा जो बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है वो यही है, और हर रोज एक नई चीज ईजाद करते हैं और उसके ऐसे ऐसे फजाइल बयान करते हैं कि लोग ट्रायल के लिए ही ले जाते हैं और फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। हालांकि बास चीजें इंतहाई मामूली होती हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव बिकती हैं। बाज़ोकत लोग स्कार्फ तो लेते हैं लेकिन बहुत बारीक कपड़े पहनते हैं, स्कार्फ भी बहुत बारीक होता है, इसका क्या हुक्म है? इसका हुक्म वही है कि जैसे हदीस में आता है, जिसके रूह से ये पता चलता है कि जो सिफत बयान की गई है हिजाब वाले कपड़े की, कि ना शफाफ हो ना वसाफ हो। शफाफ कहते हैं सी थ्रू को, वसाफ कहते हैं टाइट, जो हर चीज का वस्फ बयान कर दे। तो ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। सतर किससे छुपता है? जो चीज ढक ले, और दूसरा ये कि टाइट ना हो। दस हुमर हिन्ना इंक्लूड कलरफुल दुपट्टा? नहीं, इसलिए कि जो चीज जीनत में आ जाए उसको लेके बाहर मत जाएं। उसमें कलरफुल कढ़ाइयां, इस तरह की कोई भी चीजें, झालरें, ऐसी लेसेस के जो दूर से मुतवज्जे कर दें आपकी तरफ सबको, इन तमाम चीजों, क्योंकि जीनत में ये चीजें शामिल हो जाती है ना। किस लिए लगाते हैं आप लेस? कढ़ाई किस लिए करते हैं? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, खूबसूरती के लिए करते हैं या बदसूरती के लिए करते हैं? तो खूबसूरती को तो छुपाने का हुक्म है। स्कार्फ, गाउन या हिजाब वगैरह को ब्यूटीफाई किया जा सकता है, लेस, रिबन, मोती, कढ़ाई, आप बताएं। बात यह है कि अच्छा, जब भी कभी मैं किसी पब्लिक गैदरिंग में होती हूँ ना, लोग मुझसे हिजाब का सवाल करते हैं, मैं उनको जवाब, ये इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं बताती, मैं उनको एक बात कहती हूँ कि हिजाब का मतलब है जीनत छुपाना, खूबसूरती छुपाना। कुरान में दो दफा आया है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, जीनत जाहिर ना करो। जाहिर होना और करना में फिर फर्क है। होना में तो कुछ चीजें हैं जो मजबूरी है आपकी, उसमें एक बच्ची ने बहुत तफसील से वो सारी बातें, पॉइंट्स लिख दिए थे कि क्या क्या चीजें, जैसे कद है, चाल है, गुफ्तगू है, आपके हाथ है या मेहंदी है या सुरमा है। अब ये तो माजहरा मिनहा में आ गई, लेकिन करना क्या है कि आप बैठ के घंटों लेस लगाएं और ऊपर मोती लगाएं और सजाएं और उसके ऊपर शीशे लगाएं कि आप जरा धूप में चलें तो दूर दूर तक लश्कारे हों। तो ये चीजें जाहिर करने में आ जाती हैं, ठीक है ना? तो जो चीजें जाहिर करने में है वो दुरुस्त नहीं है। आप भी जब अपने आप को कोई बात पूछनी, जो इतने ढेर सवाल थे ना, इतना मैंने रात रद्दी की टोकरी में फेंके, उन सब में बात यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? दो चीजें समझने की है। एक ये कि जाहिर करनी नहीं, जो हो जाए सो हो जाए, हो जाने में करने में फर्क है। हिजाब पहना जाता है जीनत छुपाने के लिए, अगर उसको आप फिर ब्यूटीफाई करना शुरू कर दें तो आपने क्या छुपाया? फिर तकल्लुफ क्या है? पहनने की क्या जरूरत है? वो जो अंदर है वही ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो रिश्तेदार, वो जो तकसीम की थी ना महरम और नामहरम की, उसको समझ लें और फिर उसके बाद अहकाम की सख्ती और शिद्दत और नरमी जो है खुद ही समझ आ जाएगी। मुस्तकिल महरम, नसब जैसे बाप, बेटे, भाई, भतीजे, भांजे, मामू, चचा, सगे, सतेले सब इसमें शामिल। ससुराल जैसे शौहर, शौहर के बेटे और ससुर। रजात, रजात से हर वो रिश्ता हराम है जो नसब से हराम है, ससुराल से नहीं, नसब से। फिर महरम में मुस्तकिल महरम तो ये थे। वक्ती महरम जैसे बहनोई, खालू, फूफा, ये जो है ये वक्ती तौर पर महरम हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ वो सारी आजादी नहीं जो हकीकी महरम के साथ है। एक वक्ती तौर पर अगर हकीकी महरम में से कोई ना हो तो बिल्कुल ना महरम की बजाय इन वक्ती महरम से फायदा उठाया जा सकता है जरूरत के तहत किसी भी मदद लेने के लिए। फिर गैर महरम है, उसमें रिश्तेदार गैर महरम है और अजनबी गैर महरम है। रिश्तेदार गैर महरम में ससुराल या नसब के हवाले से, मसलन ससुराल में देवर, जेठ वगैरह, उनके कजन, शौहर के मामू, चचा, ये सब। और नसब के जो हैं अपने, जैसे फर्स्ट कजन्स हैं या और इसी तरह बरादरी के लोग जो हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं। अजनबी गैर महरम मुस्तकिल और वक्ती और रिश्तेदार गैर महरम के अलावा हर शख्स अजनबी गैर महरम है, ठीक है? और मुस्तकिल गैर महरम है, उनको सिवाय शादी के महरम नहीं किया जा सकता या रजात के महरम नहीं किया जा सकता। रजात और शादी दो चीजें हैं कि जिसके साथ तो आप उनको महरम कर सकते। अब जब पर्दे की बात आती है तो जो बिल्कुल मुस्तकिल ना महरम है उनके सामने तो आप मुकम्मल तौर पर एक फॉर्मल ड्रेस में और फॉर्मल वे में जाएंगे, लेकिन जो ना महरम है मगर रिश्तेदार है, जिसमें कुछ बड़े आ जाते हैं आपसे, कुछ छोटे आ जाते हैं आपकी उम्र से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह सवाल लिखा हुआ है
1: जो हमसे बड़े हैं हमारे कजन और उनकी शादियां होगी। कुछ ने लिखा है जो

हम से छोटे थे और हमने उनको पाला और हमसे छोटे हैं, तो भाई ये फिर अपने हम उम्र तो बहुत ही थोड़े रह जाएंगे हैं? तो इसलिए बड़े हो या छोटे हो या हम उम्र हो, कोई भी हो, तो वो घर में आते हैं, रिश्तेदार हैं, किसी शादी में आएंगे, कहीं आएंगे। ऐसी सूरत में जब आप यंग हैं, शादी नहीं हुई, तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन अगर शादी हो चुकी है और मेकअप आपने नहीं किया हुआ या बहुत ऐसा लिबास नहीं पहना हुआ, तो घर के नॉर्मल ड्रेस में एक सादा चादर के साथ आप उनके साथ बात सलाम दुआ करके खाना रख सकते हैं, जरूरत की बात कर सकते हैं, और उस ये एक नॉर्मल अंदाज में आप उनके साथ मामला कर सकते हैं। यहाँ इतनी सख्त पाबंदी नहीं होगी जितनी वहां पर बाहर होगी। तो जो उम्र रसीदा हो, ठीक है, उम्र रसीदा हो कजन आपके, या आप उम्र रसीदा हो चुके हैं और फर्स्ट कजन है, तो अगर ना पर्दा करें तो कोई हर्ज नहीं है। यानी उस तरह का जो आप फॉर्मल एक बाजार में किसी से कर रहे हैं, उसमें आप गाउन और स्कार्फ और वो सारी चीजें ना भी करें तो कोई नहीं। एक चादर ली हो, बाल नंगे ना हो, गला ना नंगा हो, जेवरात इस तरह के या सीना नंगा ना हो, बस सिर्फ ये कि हाथ या चेहरे की हद तक बगैर मेकअप के अगर आप उनके सामने आ गए हैं तो कोई क्यामत नहीं टूट पड़ी। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो बहुत सारे आपके सवाल जो है इसी के अंदर आ जाते हैं। लड़कियां बची रहें तो क्रिस्टल से ज्यादा कीमती, वेस्टर्न एक सेइंग मुझे याद आ रही है, किसी ने बच्ची ने लिखी है, बहुत मशहूर है वहां पर, कि बुरी लड़कियां वो होती हैं जिनसे लड़के महज दिल लगी करते हैं और अच्छी लड़कियां वो होती हैं जिनसे वो शादी करते हैं। इस तरह वो लड़कियां खुद को ज्यादा बावकार और महफूज तसव्वुर करती हैं जो लड़कों की गैर महज़ब हरकतों से खुद को दूर रखती हैं। शादी की तवक्को पर जो लड़कियां लड़कों को खेल खेलने का मौका देती हैं वो हमेशा परेशान होती हैं। इसके बरस जो लड़कियां अपना इज्जत वकार संभाले रखती हैं और वो उस मुतल्लका लड़के से शादी न होने पर महफूज तो रहती हैं और उससे शादी होने की सूरत में उनके शौहर के दिल में उनके किरदार की पुख्तगी की वजह से इज्जत और एहतराम बढ़ जाता है जो जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है और ये उनके सब्र का, सेल्फ कंट्रोल का सिला होता है। ये वाकई एक हकीकत है कि एक इंसान खुद को जब हुदूद के अंदर रहता है तो कभी शर्मिंदा नहीं होता। जो हुदूद तोड़ता है वो वक्ती तौर पर तो एंजॉय करता है लेकिन बिलाखिर शर्मिंदगी उसका मुकद्दर होती है और अगर वो बात दूसरों के सामने खुल जाए तो रुसवाई का सबब बनती है। तो एक छोटी सी खुशी और एंजॉयमेंट के लिए इंसान हराम का इर्तिकाब करके बसावकत सारी जिंदगी के लिए नफसियाती मरीज बन जाता है। जो लोग हिजाब पे तनकीद करते हैं उनका कहना है कि कुरान की मुतल्लका आयात की तफसीर कल्चर के हिसाब से की गई है। हर एक को यह देखना है कि उसके कल्चर के लिहाज से क्या चीज मारूफ है। इससे पता चलता है कि सर ढकना कल्चर है, खासतौर पर एशिया में। इस बुनियाद पर तो बहुत सी मुस्लिम खवातीन हिजाब को तर्क कर रही हैं। अब आप देखिए कि मैंने किस कल्चर के एतबार से तफसीर की है। किसी कल्चर का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने तो जो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र किया है। और वो लफ्ज क्या है आयत निकाल लीजिए ताकि आप दोबारा देख लीजिए, इसमें अगर क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे सकिए। अब देखिए कि वकुल للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن। خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی۔ خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، سکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں۔

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको
1: हाउस बिल्लाह इब्न शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़र है। चार बज चुके हैं या डेनमार्क के, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है 7:02 हुआ चाहते हैं। 26/8/2026 का प्रोग्राम है। सामिन, हमारा काम है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, जो भी हमारे मौजूद मेहमान आते हैं उनके साथ आपका रबता हो जाए, आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो इस वक्त डेनमार्क का मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन 22-23 के करीब जो है वो टेम्परेचर भी है, बड़ा प्यारा टेम्परेचर है। पाकिस्तान में डेफिनेट गर्मी होती है, लाहौर के मौसम में भी बहुत गर्मी होगी, डेफिनेट होगी, होनी भी चाहिए क्योंकि आज के दिन बारिशों का मौसम है। तो समझ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी मौजूद मेहमान है जिनका ख़ुद भी मीडिया से ताल्लुक़ है, वो बहुत सारे स्टेशन के साथ काम भी करती हैं, अपने प्रोग्राम भी बनाती हैं, और एक पार्टी की जो है वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो इस वक्त लाहौर की फ़िज़ाओं से रिफत साजद जो है हमारे साथ मौजूद है। रिफत, आपको कोपेनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, थैंक यू सो मच राजा साहब, मेरी तरफ से आप सबको और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम रिफत। मैंने प्रोग्राम शुरू किया है तो यहाँ डेनमार्क में जब हमारे मेहमान हमारे करीब आते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना तारफ खुद करा दें, आप क्या करते रहे, करती रही या कहाँ काम कर रही हैं, किस पार्टी से आपका तल्लुक है। दिस इज़ अप टू यू, जो आप कहना चाहें कहें, फिर आपसे सवाल जवाब करेंगे।
2: जी, थैंक यू जी। ऐसा है कि मेरा नाम रिफत साजिद है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोबा खवातीन काफ से जिला लाहौर की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा UAE में ह्यूमन राइट्स की वाइस चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ मुंसलिक हूँ, और शोर न्यूज की ब्यूरो चीफ भी हूँ, और किसी की प्रेसिडेंट हूँ किसी की मुस्लिम फजला में और लाहौर में, ऐसे ही है। और माशाल्लाह से मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ अपने सारे सामाइन से बात करने का मुझे मौका दिया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ।
1: रिफत, बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बिल्कुल जिस तरह एक न्यूज़ रीडर की आवाज़ होती है, अल्लाह ताला ने आपको ये खूबी दी हुई आवाज़ में, जो कहते हैं माइक पे पता चलती है आवाज़ का कि आवाज़ कैसी है। तो आपने मुस्लिम लीग काफ शोबा ख्वातीन के साथ भी काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स का भी काम करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा अपना पार्टी का तारफ तो कराएं।
2: जी, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि कायद आजम की जमात, ये कायद आजम की जमात जो अपना तारफ एक तो खुद भी है, कायद आजम के साथ मुंसलिक है, इसके साथ साथ जैसे हमारे लीडरान बदलते जाते हैं आगे बढ़ते हैं सिलसिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी जहर शहीद की बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स और कुर्बानियां हैं जिससे ये कायम और दायम है अभी तक, और मैं चाहूंगी कि इस पार्टी को हमारे कायदीन चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी सालक हुसैन साहब और चौधरी शाफी हुसैन साहब, ये दोनों भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादा हैं, और माशाल्लाह बड़े एहसान तरीके से अपनी पार्टी की जमहूरियत की अलमबरदार पार्टी है इसको लेके चल रहे हैं। और हम लोग जो अहदेदारान हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी अहदेदारान हैं, हमारी मरकजी प्रेसिडेंट मैडम फारूक खान साहबा हैं जो कि MNA भी हैं, इसी तरह हम लोग बाहमी इत्तफाक से अपने शोबा को और हर विंग्स को लेके पार्टी चल रही है, जिसका सारा क्रेडिट हमारे कायदीन को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि कभी भी कोई आपने पाकिस्तानी होने के नाते और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम की जमात है, कोई गैर कानूनी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि नदामत को, पार्टी कायदीन को या पार्टी को। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने सारे जितने हमारे अहदेदारान हैं, गाये बगाये हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं मुस्लिम लीग हाउस में अहदेदारान के, वहाँ हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि जो हमें बात कही गई है बुनियादी उस असूल से हमने नहीं हटना और आगे बढ़ना है हर जिद्दत के साथ अपनी पार्टी के और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। जी
1: रिफत, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि चौधरी सालिक साहब चूंकि हमारे ओवरसीज़ के मिनिस्टर भी हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे, जल्दी डेनमार्क तशरीफ़ आएंगे, एक वफद के साथ आएंगे। चौधरी शाफे साहब को भी जब टाइम हुआ वो भी तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन यहाँ डेनमार्क से हमारे मिर्ज़ा अज़र बेग साहब जो है पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं इस वक्त, तो वो भी यहाँ से पाकिस्तान गए हुए हैं, तो वो किन हालों में? ठीक है, अपना यहाँ तो उनका बड़ा नाम था, बड़ा उन्होंने काम किया।
2: जी राजा साहब, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे जो ये अजहर बेग साहब है, मिर्जा अजहर बेग साहब, जो कि बहुत नुमाया हैसियत रखते हैं, चौधरी सालक हुसैन साहब जो कि ओवरसीज की मिनिस्ट्री है उनके पास, और चौधरी शाफी हुसैन साहब उनके पास भी दो मिनिस्ट्री है पंजाब की, वजारत सनअत तजारत और महकमा औकाफ की। लेकिन बात है कि जैसे अभी आपने फरमाया, जब से डेनमार्क ने भी और बहुत सारी जगहों पर जैसे मिर्जा अजहर बेग साहब बहुत अच्छी तंजीमी सरगर्मियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लिए कर रहे हैं, उनमें डेनमार्क की मैं बात करूंगी कि वहां के चेयरमैन मुस्लिम लीग काफ के डेनमार्क में जो है चौधरी साजिद हनीफ साहब और

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ लाम।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन नाज़रीन, जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फ़जाओं से मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब जनाब अज़र बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, आपको कोपेनहेगन की फ़जाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: ये बड़ी मेहरबानी राय साहब, मेरी तरफ से सब डेनमार्क के रहने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपको भी।
1: वालेकुम सलाम। बेग साहब, आपकी मसरूफियात हमें मीडिया के जरिए तो पता चलती रहती हैं, तो आज कल क्या

0: है, तो ऊपर से ये बारिशों का मौसम है, गुजरात में स्पेशली वो सैलाब वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें भी ये दौरे वगैरह करते हैं, और जो हो सकता है इनको लोगों की मदद मदाद भी करते हैं, तो अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी, दो मिनिस्ट्री है उनके हवाले से भी काम करते हैं, तो ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी वो सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। मरकज में सालक साहब है, पंजाब में शाफे साहब है, और हम लोग इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, इधर की पॉलिटिक्स, इधर की सियासत और उधर की सियासत जरा और तरीके की है, इधर जरा और तरीके की है, तो अच्छा है, वो सीख रहे हैं, तो अपने क़यादत से सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, जो वो बोलेंगे उनके मुताबिक काम करेंगे। जी
1: बेग साहब, आपकी मीटिंगें होती रहती हैं, ज़ाहिर है पार्टी की मीटिंगें चलती रहती हैं, जो अखबारात में भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि और आजकल हर रोज़ आपकी कोई ना कोई मीटिंग होती है। तो यहाँ डेनमार्क में भी माशाल्लाह 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया गया, पाकिस्तान एम्बेसी की बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी, और वहाँ
0: जी
1: बहुत सारी चीज़ों को इस दफ़ा शील्ड भी दी गई, 17 इम्तियाज़ भी जो है वो कोपनहेगन के शहरियों के हिस्से में है। आप भी कोपनहेगन के शहरी, आप क्या कहेंगे?
0: जी मेरी तरफ से तो मलक साहब को भी मुबारक हो, वो डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानी एक बंदे को गवर्नमेंट पाकिस्तान वो अग्रेसर नवाज रही है, तो मैं खुशी होनी चाहिए, वो इस काबिल है, स्पेशली आपको भी उन्होंने शील्ड दी है, आपको भी मुबारक हो, और अल्लाह
1: शुक्रिया।
0: ताला आगे भी आपको तरक्की दे, और ऐसे ही चलते रहे हम सब मिलजुल के, तो खुशी होती है जब अपना, मेरा मुल्क तो डेनमार्क भी है, मेरे सारा आप लोग सारे बहन भाई हैं उधर हैं, तो आप लोगों का नाम लेता हूँ, बात बात पे कहता हूँ कि हम डेनमार्क के लिए कुछ करें, स्कैंडिनेविया के लिए कुछ करें, उधर के ओवरसीज के लिए कुछ करें, वो कहते हैं इंशाल्लाह टाइम देंगे करेंगे, और हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो मेरी तो यही कोशिश है कि सब लोग अच्छे तरीके से, हम पाकिस्तान भी जब आए तो अच्छी सानियां पैदा हो हमारे लोगों के लिए, स्पेशली एयरपोर्ट पे, और स्पेशली जो थाना कचहरी का कल्चर है इसमें सानियां पैदा हो, जो लोगों के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो लोग सलूक करते हैं, मैंने खुद भी देखा है और लोगों से भी सुना है जी, बहुत ज्यादती करते हैं, तो इस पे वो मोहसिन नकवी साहब से भी वो कहते थे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो वजीरे दाखला है, उनके अंडर है इंतजामिया सारी पूरे पाकिस्तान की, अच्छा होगा, राम राम से ही होगा इंशाल्लाह, अभी 2-2.5 साल है, तो चौधरी साहबान लगे हुए हैं, दोनों भाई सारे मिलजुल के कर रहे हैं, और पंजाब में स्पेशली इंशाल्लाह इनका काम नजर आ रहा है, गुजरात में तो नजर आया सबको, सड़कें बन गई हैं, सारा काम कंप्लीट हो रहा
1: ये
0: है,
1: बेग साहब, ये जो
0: तो
1: पानी नज़र आता है, ये पानी इतना ज़्यादा कहाँ से आ जाता है? हम भी रहे पाकिस्तान में, कभी इतना सड़कों पे पानी नज़र नहीं आता, या ये भी कोई एक आई आई मूवी बनती है जिसमें इतना बड़ा सैलाब दिखाया जाता है गलियों में?
0: नहीं, ये नेचुरल है, इसलिए कि ये बारिश का जो पानी था वो तो शाफे साहब ने क्लियर कर दिया, पहले 10-10 दिन वो पानी नीचे नहीं जाता था, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर है, पीछे रह जाता है, ये जो पानी आता है ये सैलाब का पानी कह ले, हमारे से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है बल्लू खोखर, उसको कहते हैं गांव है सड़क है, उधर से वो जो सैलाब आता है ना पानी, वो बन जो होता है वो तोड़ देते हैं लोग, वो शहर की तरफ पानी कर देते हैं, तो वो पानी जब शहर में आता है तो वो सैलाब की तरफ लोगों के घरों में सड़कों में वो पानी आके खड़ा हो जाता है, फिर गाड़ियां लगती हैं, फिर वो टाइम तो लगता है, पहले लोगों ने बोरियां गटरों में बोरियां डाल दी थी ना, जो इनको इनके साथ जो भी बातें लोग करते थे अपोजिशन वाले, आपको भी पता है मुखालफत जब होती है तो ऐसे प्रोग्राम वो लोगों ने बंदे छोड़े होते हैं जो इनके खिलाफ काम करते हैं, ऐसे घटिया काम है ये, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, बंदों को नुकसान करते हैं घरों
1: बेग
0: का,
1: साहब, आपने ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि लोग गटरों में बोरियां दे देते हैं अपनी मुखालफत में, ये तो कम्युनिटी को नुकसान होता है।
0: ये तो सबको बताया कि ऐसे ही करते हैं, ये जलालत करते रहे हैं, अब नहीं होगी, अब तो बहुत ये मरियम नवाज ने भी इस पे एक्शन लिया है, गटर सिस्टम है, गटरों के ढक्कन

0: जाते हैं, और जो पुल के ऊपर वो सारी जंगला वगैरह लोहे का होता है वो काट के ले जाते हैं, बंदे भी ने अपने आप को दुरुस्त करते हैं। ठीक
1: बेग साहब, आपको मौका मिलता रहता है लीडरान से मिलने का, तो चौधरी शाफे और जो दोनों भाई जो हैं वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, हमारे ओवरसीज के जो वजीर हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप सब आपका मिलना जुलना रहता है, तो आप खुद ओवरसीज के मसाइल सबसे बेहतर कौन जानता है आपके,
0: जी,
1: तो
0: नहीं
1: इन
0: हम
1: मसाइल
0: इंशाल्लाह जो हमारी मीटिंग हो रही है ना वो सालक साहब के साथ होगी, स्पेशली ओवरसीयर पाकिस्तानियों के लिए, तो उसमें शाफे साहब का मेरी कोशिश है स्कैंडिनेविया में, स्पेशली डेनमार्क में वो आए और आएंगे इंशाल्लाह, और पहला इंटरव्यू भी आपके साथ करेंगे आने से पहले भी, और मंगल वाले दिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में आम लीडर्स ब्रांड से आपका बात भी मैं कराऊंगा और मीटिंग भी दिखाऊंगा लाइव, और जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो मेरी कोशिश होगी कि मेरे कोपनहेगन के लोग देखे, मुझे ना देखे, इनके काम देखे, चौधरी शाफे साहब के काम देखे, सालक साहब के काम देखे, और ये कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे भी करेंगे, और जो भी मसले मसाइल है डेनमार्क के अंदर लोगों को, जो भी किसी फैमिली को कुछ जमीन का है या कोई वैसे ये पर्चे वगैरह जाली लोग करा देते आजकल तंग करने के लिए, या और भी कोई मसले मसाइल है तो वो मुझे बताएं, आपको बता दे, किसी और को बता दे, वो इन तक पहुंच जाएंगे और ये एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, लेते हैं नोटिस लेते हैं, मैंने ये शाफे में देखा है, सालक साहब ने देखा है कि ये नोटिस लेते हैं, ये झूठ के खिलाफ बोलते हैं, बात सच्ची हो और ये उस बंदे के साथ खड़े हो जाते हैं, बकाया हमारी आपस की लड़ाइयों में छोटी मोटी मैं या ऐसे हूँ मैं ऐसे हूँ, मेरे लिए सारे काबिले इज्जत है जो उधर बैठे हैं, मैं आप लोगों में से हूँ, मैं उधर ही आना है, ये आनी जानी चीजें होती हैं, ये सीटें ये ओहदे ये कोई मायने नहीं रखते, इंसान का अखलाक प्यार और असद जायज मुनाफ्त जो है ये अच्छी बात नहीं,
1: बेग
0: मैं
1: साहब,
0: इधर
1: हमने
0: बैठा
1: देखा आपका ऑफिस बड़ा खूबसूरत है, लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, पीछे बड़ी खूबसूरत आपने तस्वीर भी लगाई हुई है अल्लामा इकबाल साहब की, बाकी कायदे आजम की तस्वीर भी हमने देखी है, लोग साइल आपकी आपके पास आते हैं, तो जाहिर है आप एक पोस्ट पे
0: जी।
1: बैठे हुए आम बंदे तो नहीं, आप रह गए पंजाब में, अगर सीनियर नायब सदर हैं तो कोई छोटी पोस्ट तो नहीं है ये।
0: देखिए जी, ये जो मेरे सुनने वाले हैं ये भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये पंजाब कितना बड़ा, 13 करोड़ आबादी का पंजाब है, और किधर सिंध से, सिंध के पास से शुरू होता है वो उधर जाता है पिशावर तक, पिशावर से आगे जाता है, तो लोग आते हैं इनके पास, बहुत बड़ी पार्टी है माशाल्लाह, चारे सूबों में इसकी नुमाइंदगी है, आप चेक करा लें, और लोग हमारे पास आते हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं, और प्रॉपर हम टाइम देते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं, और अपने अपने कायदीन को बताते हैं जी ये मुल्तान से आए हैं, 14 अगस्त को ये सारा पंजाब के लोग लेडीज और जेंट्स सब आए हुए थे, और शाफे साहब ने सारा दिन मैं साथ था, उन्होंने टाइम दिया, तमाम चैनल वाले उधर थे, ARY जियो 42 ये जितने रंग टीवी दुनिया सारे थे उधर, तो अच्छा टाइम गुजरा है, सब खुश थे, और स्पेशली उन्होंने बोला था कि जो ओवरसीर है उनके जो भी मसले मसाइल है वो बताएं, आमीन इंशाल्लाह, ये नहीं है कि वो यूरोप के लोग हैं, वो सऊदी अरब के होंगे, दुबई के, कुवैत के, जिधर कतर के, वो कहते हैं हम काम करेंगे तो वो करते हैं, और कोई भी काम हो आप लोग, आप भी शाफे साहब के साथ टाइम लेके आप उनका, मैं कोशिश करूंगा कि महीने में एक दफा या दो दफा आप संडे को वो 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट वो देंगे, ये वादा है मेरा, मैं करवाऊंगा इंटरव्यू करवाऊंगा उनका, मैंने उनको पहले भी बोला था जब कोपनहेगन में था, तो मैंने बोला शाफे साहब इनको टाइम दे, राज साहब को टाइम दे, मीडिया को टाइम दे, लोग इनको सब सुनते हैं, तमाम पाकिस्तानी इनको सुनते हैं, इनको पसंद करते हैं, तो वो कहते थे आपके मैं दूंगा टाइम, तो इनशाला मैं आप खुद भी उनसे बात कर सकते हैं, और कोपनहेगन के जो भी मसले मसाइल हैं पहले डबल नेशनैलिटी का था, वो भी हम आपके साथ खड़े थे याद है, बहुत साल सब ने सिग्नेचर करके दिए, और हम अम्बेसी में जाते थे पीछे भी शोर शराबा डालते थे कि सबको मिल रही है, डेनमार्क को भी दे, तो अल्लाह ने किया तो वो मिल गई। अब PIA का मसला है, तो वो भी अल्लाह करे सब मेरे से समझदार बैठे हैं उधर, उनके बहुत अच्छे है, सारा सुख तल्लक है पीछे, तो मैं इसलिए खामोश भी रहता हूँ कि मैं कहता हूँ ठीक
1: नहीं
0: है
1: बेग साहब,
0: जो जो
1: चूंकि
0: का।
1: आप वहाँ मौजूद हैं, आप पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, तो आपकी बातचीत चलती रहती है, तो लीडरान को बोले, आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ PIA का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉफिटेबल जो है वो ये स्टेशन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़र मुबादला जाता है। तो बेग साहब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लाइव करेंगे और शाफ़ी साहब से वो सारी चीज़ें जो हैं खुलकर भी डिस्कस करेंगे, आप भी डिस्कस करें चूँकि आप हर वक्त साथ होते हैं।
0: जी मैं उनको कहता हूँ कि डेनमार्क के अंदर रहने वाला कोई भी ओवरसीयर है, वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि ये गुजरात का बंदा है जी, ये मेरे हल्के का बंदा है तो ये मेरे साथ बात कर सकता है, नहीं जो भी गुजरात पंजाब का रहने वाला बंदा है चाहे पाकिस्तान का रहने वाला है, जो भी किसी को मेरे साथ काम है मैं इंशाल्लाह उसका काम करूंगा, ये शाफे साहब कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि रूटीन के मुताबिक हर बंदा जो चाहे इनके साथ बात करे, जो भी मसला मिसाइल है बताए इनको, और जो भी शिकवा गिला शिकायत पार्टी के साथ है, राजदीन के साथ है, चाहे मेरे साथ है, वो शाफे साहब को डायरेक्ट बोले ये बात है जी हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते, वो पार्टी लेवल की बात हो चाहे वैसे किसी को किसी पुलिस वाले से, किसी तो, मुझे स्टेट से, किसी तहसीलदार से, किसी पटवारी से कोई शिकवा शिकायत है तो वो शिकायत दर्ज करता है, तो वो सेल तो मरियम नवाज का बना हुआ है मगर वो सेल इनके साथ भी काम करता है, इनकी भी शिकायत वो जाती है फौरी तौर पे, तो जो भी किसी का काम है वो बताएं इनको, और हमें खुशी है कि ये हमारे शहर के हैं, कुछ तो शुजात साहब के बेटे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं
1: बेग साहब
0: इंशाल्लाह आगे
1: आपका
0: भी रहेंगे।
1: कीमती टाइम है, आखिरी सवाल आपसे करते हैं, ये जो बल्दियात का बन गई हैं, यूनियन काउंसिलें बन गई हैं, कोई इधर कोई राइट कोई लेफ्ट या आगे पीछे हो गया सारा सिस्टम, आप इसको किस तरह देख रहे हैं?
0: नहीं नहीं ठीक है इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ फतेह होगी, और ये जिला गुजरात नहीं है, दूसरे जिलों में भी इंशाल्लाह सीटें लेंगी इस दफा, और हमारे चेयरमैन बनेंगे इंशाल्लाह, मेयर बनेंगे, हमारी कोशिश है, हमारी क्यादत ने काम किया है, 26 अरब रुपया इधर लगाया है उन्होंने गुजरात के अंदर, ये तो लोग खुश हैं, आप आके विजिट करें लोग खुश हैं, उनके ऊपर अस्पतालों की कंडीशन जो है वो बेहतर की है, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, हर वीकेंड को इधर आते हैं 2 दिन इधर देते हैं, स्पेशली टीमें लगाई हुई हैं इधर, उनके नुमाइंदे हैं तो वो भी काम करते हैं, दयानतदार है सेक्रेटरी उनके, बहुत अच्छे लोग हैं, आप किसी से चेक करवा लें कि गुजरात के अंदर शाफे साहब सालक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंतजामिया तावन करती है बहुत ज्यादा तावन करती है, किसी को कोई शिकवा गिला नहीं है कि इनके साथी कोई ये करके वो करके, नहीं नहीं बहुत अमन है गुजरात के अंदर माशाल्लाह, और ऐसे ही अफजाबाद सियालकोट गुजरावाला जो भी डिवीजन के अंदर जितने जिले आते हैं इंशाल्लाह इनमें हम फतेह हमारी होगी, हमने काम किया है काम नजर आ रहे हैं, और हम भी उधर बैठते हैं दफ्तर में लोग आते हैं तमाम से पंजाब से जिलों से, और बहुत अच्छी रिजल्ट आएंगे ये मेरा आपसे वादा है,
1: बेग साहब
0: पाकिस्तान
1: आपका बहुत
0: मुस्लिम
1: शुक्रिया, हाफज साहब को सलाम दीजिएगा, जो आपका मीडिया सेल है और राजा साहब है उनको सलाम दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू सर, तमाम सुनने वालों को शुक्रिया, अल्लाह
1: नाज़रीन ये थे मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से बात कर रहे थे, और सारी बातें आपने ख़ुद सुन ली। तो जब आपने ख़ुद सुन लिया, आपको सबको उन्होंने कहा कि आप ख़ुद डायरेक्ट भी फ़ोन किया करें, डायरेक्ट उनसे बात किया करें, कोई शिकायत हो तो आप ख़ुद बता दिया करें, और हमारा भी जिक्र कर रहे थे, हमें भी बता दिया कि सामान हम तो कम्युनिटी के मसाइल जहाँ जहाँ होते हैं उठाने की कोशिश करते हैं, हम कोई अकले कुल नहीं है, ना ही हम कोई पुलिस मैन है जो हम को जो है डंडे के ज़ोर पर काम करते हैं, हमारा काम है अपने सामान जो हमारे सामान है उनको इन्फॉर्मेशन देना, यही हमारा काम है, इंशाल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: के ब्यूरो चीफ जो हैं वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तो वो सारी बातें सुन रहे हैं और दोनों चीज़ों का एनालाइज भी कर रहे होंगे। तो अदनान, आप इसमें क्या इजाफा करेंगे, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप?
1: देखिए इलाज साहब, मैं कोई इतना स्पेसिफिक सवाल नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं बल्कि ये जो स्वीडन का इलेक्शन है ना, इसका क्या कहते हैं, ये बड़े ध्रुवी है, क्योंकि जो बेसिकली बंदा एक चीज देखता है ना स्वीडन के अंदर, क्योंकि मैं 3-4 साल खुद स्वीडन में रहा था जब ये इनकी एक पार्टी जिसको कहते थे मुकार, जो खड़े हुए हुए हैं उधर, वो फर्स्ट टाइम एंटी पार्टी जिनने बड़ा आके क्या कहते हैं चेंजेस की है, और इस बार पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट में बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन रही है इस वक्त स्वीडन के अंदर सोशल डेमोक्रेट बार। तो होपफुली ये बंदा, जो मैं यही कहूंगा स्वीडन में कि जिनके पास वोट है उनको अपना वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वीडन का जो इलेक्शन है वो एक डिसाइडेड मोड पे है, एक के वो अपनी पॉलिसी जो ला रहे हैं उसको चेंज करना है कि ये जो पॉलिसी है ये रहे। तो इसलिए मैं भाई से यही करूंगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और जितना ये मेहनत कर सकते हैं ये करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेट के हैं कोपेनहेगन की तरफ से, हम भी कुछ दिनों के लिए जाकर मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी का एक कार्य है।
0: जी, आपने चौधरी शौकत साहब, आपने अदनान की बात भी सुनी और शाह साहब की भी सुनी, तो राणा साहब सुन रहे हैं, डेफिनेट आखिर में उनसे जवाब लेंगे कि यहाँ की सियासत जो हो रही है वो इस पर किस तरह देख रहे हैं। जी अपन चौधरी शौकत साहब।
2: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को और जो हमारे साथ भाई हैं उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जैसे राणा साहब की भी मैंने बातें सुनी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तान ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने इंफॉर्मेशन भी हमें दी है कि नए सूबों को पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नए सूबे बनेंगे और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को जो कि यह सहूलत मिलेगी, दूर दराज से लोग जो आते हैं वो उनको उधर से नहीं आना पड़ेगा, थोड़े थोड़े जो है ना जगह से टाइम थोड़े में वो अपने हल्के में वो जो है ना अप्रोच कर सकेंगे, छोटे सूबे होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह हमारे दुआ, हमें दुआगो होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम आए। और दूसरा, मैंने कामरान को टाइम दिया क्योंकि कामरान इलेक्शन लड़ने जा रहा है स्वीडन से, मैंने कहा वो अपना मौकफ जरा अपना खुल के बयान कर सके ताकि अवाम जो है ना वो सोचे, और स्वीडन के जो लोग हैं आपका भी वीडियो सुनते हैं और उसकी बिल्कुल हमायत करें। कामरान एक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत हर के साथ एक बड़े प्यार से पेश आता है, काम करना चाहता है, जो भी इसके हवाले से कोई काम हो तो उसी वक्त भाग के दौड़ के वो आपका काम करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे ऐसे लोगों की हमायत करनी चाहिए और हमसे जो हो सका हम इंशाल्लाह कामरान की हमायत करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे इसकी। और शाह साहब भी हमारे साथ हैं, वो उड़न से जा रहे हैं ताकि, क्योंकि भट्ट साहब का कोई प्रोग्राम है मेरे ख्याल में तो वो उधर जा रहे हैं, तो माशाल्लाह हमारे शाह साहब भी हमेशा से जो कि हमारे थिंक टैंक भी कहा जाता है कि हमारे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम राय साहब आप अरेंज हमेशा करते हैं। दूसरा, आपको जो शीट मिली है वो उसकी भी मुबारकबाद हो, क्योंकि ये जो है ना ये हमारे लिए पाकिस्तानी आवाम के लिए या हमारे डेनमार्क में रहने वाले बंदों के लिए एक एजाज ही होता है, जिस भाई को भी मिलती है हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, ताकि हौसला अफजाई हो और लोगों को भी मिलनी चाहिए ये इस तरह से काम, इस तरह से शीटें वगैरह मिलनी चाहिए लोगों को, लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना पाकिस्तान के हवाले से भी और जो या स्वीडन के हवाले से जो बातें हुई है, माशाल्लाह हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए।
0: तो साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप सफ़र में आप सवाल कर लें, फिर राणा साहब जो हमारे अब तक के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इनसे जो है वो आखिरी जवाब लें।
3: जी मेरा एक कामरान से सवाल है और एक राणा साहब से। پہلے میں رانا صاحب سے یہ کروں گا کہ صوبے بننے چاہیے, اس کی پوری حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ ایک تو اس سے جاب جو ہے وہ زیادہ پڑے گی, لوگ زیادہ سہولت ان کو میسر ہوگی, اور ہر صبح جو ہے جب 16-17 صوبے بنیں گے پاکستان میں تو انشاءاللہ پاکستان میں

0: तरक्की होगी। यूरोप का भी यही इशारा है, इसलिए यूरोप ने तरक्की की है कि ज्यादा से ज्यादा सूबे स्टेट बनाई जाए। तो कामरान आपसे सवाल यह है कि बेटा देखे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कामयाब हो जाए तो अपने स्वीडन के कानून जो है वो अपनी आवाम तक जरूर पहुंचाए, ताकि लोगों में क्रिमिनलिटी और दूसरी चीजों को स्टॉप करने में मदद।
1: पीछे से आवाज बंद कर दें, आवाज डिस्टर्ब करती है।
0: मेरी नहीं आवाज, किसी और की आ रही है, काफी देर से बंद कर दी।
1: जी शाह साहब, आप बात जारी रखें। जी राणा साहब, आपने शाह साहब की बात सुनी, शाह साहब ने अपनी बात की, तो आप इन चीजों को किस तरह देख रहे हैं?
2: आपने बड़ी खूबसूरत बात की जी। देखिए वो मैं जिस तरह पहले मैंने गुजारिश की थी सूबों के हवाले से, क्योंकि सूबे इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की बड़ी अहम तरीन जरूरत है, और वही जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पिंडी से लाहौर 5-6 घंटे का सफर करके जाना, बावलपुर से लाहौर जाना, मुल्तान से लाहौर जाना, पूरे पंजाब के जो मतलब हमारे सादकाबाद और दूर दराज से, तो वो बड़ा मुश्किल है जब हर डिवीजन लेवल पर एक सूबा बन जाता है, 4 या 6 अजला का एक सूबा, 6-8 अजला का एक सूबा बनता है, तो वहां पे रोजगार के मौके भी बिल्कुल जनाब मयसर होंगे। और हर अब देखे एक बंदा पिंडी से लाहौर नौकरी करने जा रहा है तो वो पिंडी ही नौकरी करेगा जब यहाँ पे सूबा होगा, इस्लामाबाद में सूबा होगा तो इस्लामाबाद में भी लोग जो है, इस्लामाबाद में भी वो एक प्रपोजल आ रही है कि इस्लामाबाद को भी एक सूबा बनाया जाए, और बड़ी अच्छी बात है, बनने चाहिए पूरे पाकिस्तान में सूबे, और स्पेशली सिंध में सूबे बनने जरूरी, बहुत जरूरी है, ताकि वहां पे किसी भी उसकी जो है ना वो मतलब जो दूर दराज के लोग हैं बेचारे वहां सिंध के, तो देखें सिंध और बलोचिस्तान के हालात जो है ना, आप तो आप हम दोस्त मेरे ख्याल जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, हम ज्यादा लोग पंजाब के रहने वाले हैं मेरा ख्याल है, जो गुफ्तगू से मुझे बात से लहजे से अंदाजा हो रहा है, तो जो आप सिंध में जाके देखें, आप बलोचिस्तान में जाके देखें, वहां के हालात बहुत ज्यादा कशीदा और पेचीदा है, तो वहां पे सूबे बनने से वहां पे आवाम को जो बहुत उसका ज्यादा बड़ा फायदा होगा जी। तो ये सूबे बनने बहुत जरूरी हैं, और इंशाल्लाह चीजें चल रही हैं, बस अल्लाह करे ये तमाम सियासी जमातें इस पे मुत्तफिक हो जाएं, और ये सारी सियासी जमातों का फायदा है, पूरे मुल्क का फायदा है, कौम का फायदा है, ये होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात ये है जी कि कामरान साहब चूंकि लाइन पर हैं, तो अभी ये सवाल की बात हो रही थी, तो कामरान साहब जी बड़े अच्छे इंसान हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और बड़े जिस तरह एक दोस्त भाई ने कहा कि बड़े मिलनसार, बड़े खलूस और मोहब्बत वाले और बड़े प्यार वाले शख्स हैं, तो ये इनसे जब ये इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे, इन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया, तो वो जब इनसे फोन पे बात होती थी तो बिल्कुल इनके खलूस और मोहब्बत नजर आता था, लेकिन जब मुलाकात हुई, जब ये तशरीफ लाए, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और इनकी कामयाबी के लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं, बड़ी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह ये कामयाब भी होंगे, क्योंकि ये इनको हमने जो देखा है, जो इनसे बात होती है ओवरसीज के हवाले से, डेनमार्क स्वीडन के हवाले से, तो ये बड़ा दर्द दिल रखते हैं, बड़ा अपने अपने कम्युनिटी के लिए, अपने ओवरसीज भाइयों के लिए बड़ा दर्द लेते हैं तकलीफ लेते हैं, एहसास करते हैं, तो इन जैसा नौजवान क़यादत और शरीफुल नफ्स इंसान और जो हम्बल, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी है, उसको उसकी कामयाबी अल्लाह की मेहरबानी से यकीनी होगी, और हम इनके लिए दुआ गो भी हैं जनाब।
1: दूसरा रान साहब, आपकी डेफिनेट मोहसिन नकवी साहब से आपकी मुलाकात होती रहती होगी, चूंकि जब वो भी चूंकि मीडिया से भी उनका तल्लुक
2: है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीडिया टॉक्स होती हैं, हमारे इंटरेक्शन होते रहते हैं, गेट टूगेदर्स होते रहते हैं, सारी सियासी जमातों से होते हैं, सब लोगों से होते हैं जी, बिल्कुल।
1: तो राणा साहब, ये बड़ा दरीना मसला है पीआईए का, आप अक्सर जो है अपने अखबारात में इसको जगह भी देते हैं, मीडिया भी देते हैं, तो ज़रा इसको और तरीके से ज़रा मजबूती से, ये तो ऐसा स्टेशन है डेनमार्क का जिस पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
2: सर देखिए डेनमार्क के हवाले से, डेनमार्क से मेरी वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि यहाँ मेरे बड़े अजीज तरीन भाई जो हैं राजा कपूर साहब, जो यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं डेली कैपिटल टाइम्स के, रोजनामा जौहर के, दुनिया टाइम्स के, वो मुझे तो वैसे ही डेनमार्क से बड़ा मोहब्बत और बड़ा प्यार है, ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा स्टेशन है, और फिर यहाँ जो है मतलब अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है माशाल्लाह से, ये जो आपको अल्लाह ताला ने एक एजाज से नवाजा है, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है, और आपको इसकी बहुत बहुत मुबारक हो जो आपको एक शील्ड मिली, एक इज्जत मिली, और ये पूरी एक कम्युनिटी को, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे ये आ चुके साफी बिरादरी हैं, तो पूरे पाकिस्तान के साफियों के लिए हमारे लिए एजाज है जनाब।
1: थैंक यू जी रान साहब। अदनान, आप आखिरी सवाल क्या करना चाहें, से कामरान से करें या राणा साहब से करें, फिर शाह साहब चौधरी शौकत साहब को कम टाइम मिला है। رہی ہے میرے خیال آواز عدنان کو جو صاحب کو، شاہ صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟
3: مجھے بھی آواز آ رہی ہے، میں نے سمجھا پتہ نہیں کامران سے آپ بات کر رہے ہیں
1: جو صاحب آپ کو میں نے کہا کم ٹائم ملا چونکہ ہم جمہوریت پسند ہیں تو ہم ٹائم کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں۔
3: جی جی میں سمجھتا ہوں رائے صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جیسے رانا صاحب پاکستان سے وہ سب سیاستدانوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ہمارے اوورسیز کے منسٹر صالح صاحب سے بالکل ان کی ملاقات ہوگی، ان سے بات بھی ہوتی ہوگی ان کی۔ میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ ان کے سے بھی ریکویسٹ کریں تاکہ ہمارے جو ناظرہ سا مسئلہ ڈنمارک میں ہے، یہ بہت بڑا کمیونٹی کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جب کمپیوٹر میں اس کو نادرا کے حوالے سے رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے، نیا کارڈ بنانا پڑتا ہے، تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بندہ ہمارے لیے ڈنمارک میں وہ اپوائنٹمنٹ اس کی کر دے تو یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی، اور یہ جو ہے نا یہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ڈنمارک میں رہتی ہے۔ اور دوسرا پی اے کا بھی، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر ہماری ایئر لائن نہیں چلے گی تو ہمارے جو لوگ ہیں، جوان بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پاکستان نہیں جا سکیں گے۔ 18-18 گھنٹے ان کے لیے یہ سفر تکلیف دہ سفر ہوتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ یہ پاکستان سالک صاحب سے یہ ضرور بات کریں گے، اور ہماری ریکویسٹ ہے ڈنمارک کے عوام کمیونٹی کی۔
4: اور بڑی اچھی آپ کی کمیونٹی کے لیے بڑی پازیٹیو سوچ ہے، بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو بالکل اس پہ جو ہے نا جی، ان شاء اللہ مطلب چوہی صاحب سے، ان سے جو شاہ صاحب جو ان کے وہ چوہی صالح صاحب سے، مری شاہ صاحب سے بھی پرانی ملاقاتیں رہی ہیں، اور اب تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بیچاروں کو۔ تو باقی یہ صالح صاحب سے جس کی ملاقاتیں ہماری اوورسیز کے حوالے سے رہتی ہیں، تو ان شاء اللہ پہلی فرصت میں ان سے میٹنگ کر کے، ملاقات کر کے، اس پہ بات چیت کرتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جی ہمارے جو یہ ایشو ہے اس کو حل کرواتے ہیں جلدی، ان شاء اللہ دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔
1: رانا صاحب چودھری شوکت صاحب کو 20-28 سال کے قریب جو ہے یہ قاف لیگ کے یہاں صدر رہے ہیں۔
4: ماشاء اللہ ویری نائس۔
1: تو رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، مجھے پتہ ہے مصروف ہیں، آپ بھی میٹنگ میں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔
4: جناب تھینک یو ویری مچ، ویلکم جی، آلویز ویلکم نائس صاحب،
1: تھینک یو۔
5: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामान, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था कि ये हमारे प्रोग्राम जो होते हैं इंफॉर्मेशन के होते हैं, ये ना किसी के हक में होते हैं ना किसी के मुखालफत में होते हैं, ये टोटली इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है। चूँकि हम लोग लोकल हैं, लोकल रहते हैं, लोकल हमारी बातचीत होती है कि हमारी लोकल जो है कम्युनिटी क्या कर रही है। और सामान, आपको पता है कि ये जो सितंबर का महीना और आ रहा है, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम बनाए थे और इस पर खुलकर बात भी की थी। तो अब सितंबर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और स्वीडन में जो हमारे एक पुल क्रॉस करते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, चूँकि वहाँ भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है तो वोट का हक भी लोगों के पास होता है। तो इस वक्त तजिया नगार, शायद नसीम जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे जानने की ये सारी बातें कोशिश करेंगे। शायद एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुशामद कहते हैं।
2: जी राजा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं आपको आपके शील्ड की, आपके मेडल की मुबारक दे दूं। मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा था आप नसीम मौजूद थे, तो सफारत सफीर मोहतरम सफीर ने आपको एक मेडल या एक शील्ड पेश की, तो उसके लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। आज ही बात हुई है, आज ही आपने मुझे लिया, तो आज ही मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, और आप मीडिया पे नजर भी रखते हैं, और हमारे सबसे पुराने लिसनरों में भी आपका शुमार होता है।
2: जी जी, मैं आपका ये आप गालिबन बहुत पीछे चले गए हैं, 26 साल, आज 2026 है, 2020 में चले जाएं। उस वक्त मैं एक टीन एज ही था, एक बच्चा था, छोटा सा, तो उसमें आपका रेडियो सुना करते थे। उसमें मैं वीकेंड में पार्ट टाइम संडे को मेरे हाल अपने वालद की टैक्सी भी कभी कभी चलाता था, उसमें आपका रेडियो पहली दफा सुना था। तो उसमें फिर कभी जब आप, क्योंकि उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, तो फिर जब पहली दफा ये चीज मैंने देखी इधर कोपनहेगन में, तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई। तो मैं तब हैरान भी हुआ कि रेडियो, पाकिस्तानी रेडियो जो है कोपनहेगन की फजाओं में घूम रहा है, ये क्या है। बहरहाल पता लगा, जो बड़े मेरे से बड़े थे, जो बुजुर्ग, उन्होंने बताया वाकई ये कोई पाकिस्तानी है, गालिबन उनका राजा गफूर नाम है। तो फिर उसके बाद मुलाकात भी हुई एक निजी महफिलों में आपके साथ, आपके बच्चे भी, आप भी, तो वो फिर पता लगा कि ये
1: आप, याद होगा आप कई दफा जब आए तो खुशी से एक दफा आपकी बात में आज जरा कोट कर दूं, लोगों को बता दूं, बाद ऐसी बातें होती हैं। और मैं और मुबशर प्रोग्राम कर रहे थे तो आप आए, आपने घंटी दी, तो आपने कहा आए तो आपके हाथ में एक गालिबन पिज्जा था ना, तो कहते हैं कि आप थक गए होंगे प्रोग्राम करके, चले बैठ के चाय भी पीते हैं, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, ये मैं कार्ड पे लाना चाहता हूँ।
2: जी बिल्कुल, ये बात याद आई है, ये बहुत बहुत बहुत महर, बहुत काफी पुरानी बात है, और ये उस टाइम
1: बहुत पुरानी बात
2: है, लेकिन पुरानी है लेकिन यादें रह जाती हैं। और ये वाकई ऐसे हुआ था, और मलिक मुबशर एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एक मुखलस इंसान है, वो मुझे याद है। और वो कैसी है ये चीजें जो कि यादें रह जाती हैं आदमी की, इंसान की, इंसान चले जाता है इस दुनिया से लेकिन फिर यादें रह जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं उसको, उस टाइम के जमाने मेरे हिसाब से उस टाइम के जमाने ज्यादा अच्छे थे आज की बनिस्बत। अगर मैं आज देखूं तो देखें हम, बहरहाल इसके ऊपर मैं क्या डिस्कस करूं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं।
1: आजकल जो है ना, ज्यादा वो जिस तरह नहीं होता कोला जलता है, हालांकि कोला बड़ी अच्छी चीज है, फायदे वाली चीज है, आप उस पर ग्रिल करते हैं, लेकिन आखिर में जब जो बंदा कोले से जलता है उसको पॉजिटिव लें तो वो जलने वाली चीज बड़ी अच्छी होती है, उस पर आप जो है ग्रिल करते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ जलना चाहते हैं तो फिर बंदा कोला आपको पता राख ही हो जाता है।
2: जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, कोले ने तो राख ही होता है आखिर में, तो उसको फिर आप दोबारा तो नहीं वापस लेके आ सकते जब कोला राख हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: शायद आते हैं इलेक्शन की तरफ, आप सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तानी निसाद भी हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा क्या लेटेस्ट पोजीशन है इस वक्त।
2: जी राजा साहब, आपने मुझे इस वक्त फोन किया है, मैं इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूँ, जो उसके अंदर मेरी जो है ना हास कर, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल दूंगा कि उसमें मेरी सारी डिटेल मेरे सामने पड़ी होती है सारी, हास कर, क्योंकि हर चीजें, बहुत सी चीजें बंदा इंसान भूल जाता है ताकि गलत ना हो जाए। तो मैं इसलिए अपने सामीन और आपने ये लेना है इस टाइम कोई क्या कहते हैं मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसमें यह है कि कोई कोताही अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसकी माजरा चाहता हूँ। स्वीडन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 13 सितंबर को है, जिसमें बड़े इलेक्शन है, अपने रीजन के भी हैं, कमून के भी हैं और पार्लियामेंट के भी हैं। तो मैं स्टॉकहोम की पहले बात करूंगा। स्टॉकहोम से गालिबन 5 से 6, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ डिटेल में कि मैं अपने घर ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ ना, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने आपकी कॉल उठाई, आपकी आपकी जो गुजारिश थी, गुजारिश किया थी, आपका हुक्म था, तो मैंने कहा चलो मैं उठा लेता हूँ, और क्योंकि आपकी कॉल आई है। तो मैं दरअसल कल चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, आज। तो उसमें ये है कि स्टॉकहोल्म से जो है ना तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं, दो या दो जो पाकिस्तानी हैं वो उसमें दो दो दो खवातीन हैं। ये एक का नाम सारा सारा नहीं सारा कुका नाम है, और एक का नाम जकिया बीबी, ये दो हैं। और एक बुजुर्ग है गालिबन 80 के करीब, वो भी रीजन से भी और कमाउन से भी और पार्लियामेंट से भी खड़े हो रहे हैं। बाकी एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई खटाना साहब है, वो कमाउन से, और दो और जो है पाकिस्तानी वो भी वो कमाउन से खड़े हो रहे हैं। और ये जो लेडी है सारा कुका, ये खड़ी हो रही है स्टॉकहोम के साथ, एक शहर है जैसे कोपेनहेगन के साथ ग्लोस्टोप होता है, या क्यों कह लें, या कोई ऐसे क्लासक से वगैरह वगैरह, तो वो एक उसके लिए मेयर के लिए खड़ी हो रही हैं। और उनके जो चांस हैं जो हैं मेयर के लिए, वो सुनने में आ रहा है कि 90%, 85-90% के करीब है वो मेयर के लिए खड़ी हो रही हैं सारा कुका। और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो, ये मैं स्टॉकहोम की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो काउंसिल के लिए, वो एक पार्टी का नाम है मिलियो मिलियोपैथी, जैसे एनवायरमेंट जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी उस तरह की एक पार्टी है। और बाकी जो दो दोस्त हैं वो सोशल डेमोक्रेट में हैं और वो काउंसिल के लिए हैं। तो इसकी मजीद डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा, अगर मैं अपने ऑफिस में हुआ तो इंशाल्लाह ताला के नामों के साथ पूरी, कि क्या है और किधर किधर से और क्या है। ये तो हो गया स्टॉकहोल्म से। मेरे शहर यानी कि मालमो से उधर जो है गालिबन 5 से 6 हैं, जिसमें से दो जो पाकिस्तानी हैं, तीन जो चार हैं वो पाकिस्तानी जो है, वो 3 से 4 जो है, मुझे अगर मुझे गलत नहीं हो तो वो कदियानी जो उनका जो जो फिरका है उस सब से खड़े हो रहे हैं वो इधर मालमा में। स्टॉकहोल्म में ऐसे कोई नहीं है। तो वो और जो दो पाकिस्तानी हैं जो जो अपना जो पाकिस्तानी है, जिसे हम क्या कहते हैं रियल पाकिस्तानी ये कह लें, वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक जो है वो है अपना कामरान अनवर साहब, और दूसरे अमजद खान साहब। और अमजद खान साहब भी एक बुजुर्ग से मिल रहे हैं, बुजुर्ग से मुराद के 70 के करीब उनकी एज है। और कामरान जो है वो आपको पता ही है, वो एक ये
1: नौजवान
2: यूथ में
1: है।
2: आता है, नौजवान में कह लें, नौजवान में आता है। और ये दो जो लोग हैं इनकी कैंपेन जो है जारी है, और मैं कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता। तो अभी जो है इसकी जो शिद्दत है, मैं सुनने में आया, मैं आज 20-21 है गालिबन, अगर डेट मुझे गलत नहीं हो तो मेरे ख्याल है बीस
1: आज
2: इक्कीस
1: बाईस है,
2: बाईस
1: बाईस है
2: हाँ
1: आज।
2: बाईस मेरे ख्याल है गालिबन नेक्स्ट वीक तक इनकी कैंपेन में वो शिद्दत आ जाएगी। तो शिद्दत से मुराद के फिर ये उसको बढ़ चढ़ के जो ना कैंपेन को करेंगे, मेरा यो ख्याल है जो मुझे सुनने में आया। तो और ऐसा होना भी चाहिए।
1: तो
2: तो
1: क्या
2: जो
1: ये
2: जो
1: बरादरी कौन सी, देखें ये सारे बेसिकली सारे स्वीडन हैं, चूंकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस पे कोई जात पात वाला तो मसला ही नहीं होता, किस ग्रुप से है किस ग्रुप से नहीं है। तो लेकिन ये जो क्या कादियानी बरादरी इतनी है जो इतने तीन मैंडेट उनके जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं?
2: देखें जी, कादियानी जो जो जो कहते हैं बरादरी की आप बात कर रहे हैं, वो उनका एक ये यानी कि वो एक मुनज्जम लोग हैं, मैंने जो देखा है। वो गोथेबर्ग में भी हैं बहुत ज्यादा, यानी कि स्टॉकहोम से ज्यादा वो यूथेबर्ग, यानी कि हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गोथेबर्ग, एक शहर है जो स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर जो है वो मालमो है। गोथेबर्ग में वो काफी तादाद में, मैं उसका भी पता कर रहा हूँ कि वहां पर कितने हैं पक्षनी है, मेरे मुझे कल तक पता लग जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा ताकि गलत ना हो जाए। तो उधर से मुझे लगता है कि उधर से भी काफी होंगे, या अपनी जो قدیانی برادری ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک منظم وہ لوگ ہیں اور وہ تعلقات کی بیس پر, میرے ایک سننے میں ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا یار سر, وہ تعلقات کی بیس پر ایک جگہ کو لکھ رہا تھا پاکستانی جو اپنے جو ہم کر رہے ہیں الیکشن کمپین, اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ جگہ تعلقات کی بیس پر ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں. تعلقات کی بیس پر نہیں ہوتے ووٹ, یہ کارکردگی اور آپ کی جو آپ منشور جو دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہاں پر تعلقات کی بیس پر پاکستان میں کیا جاتا ہے لیکن میرے خیال ادھر بھی اب ختم ہونا چاہیے. تو یہ اس ملک ان ملکوں میں آ کے جب آپ رہ رہے ہیں 10-15-20 سالوں سے, کوئی رہ رہا ہے 10-15, کوئی شادی کر کے آیا, کوئی دماد آیا, زیادہ تر یہی ہے نا. میں میری جیسے تو کوئی کم ہے جو اس وقت یہاں پر سویڈن میں ہیں, تو جو شروع سے یہاں پر رہ رہے ہیں جن کے والدین 60 سال پہلے آئے تھے یا 50 سال پہلے, تو آپ جب آئے ہیں تو آپ 10-15-20 سال یار بہت ہوتا ہے ان ملکوں سے سیکھنے کے لیے. جمہوریت کا سیاست بھی ایک, سیاست تو حرام نہیں ہے, سیاست بھی ایک بڑا اچھا بڑی چیز ہے, لیکن ایک منصف سیاست, ایک کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ساتھ, ایک لیگل لپٹی, منافقت کے بغیر, جھوٹ مکاری کے بغیر بھی آپ سیاست کر سکتے ہیں. سیاست تو کسی نے روکا آپ سے, سیاست بڑی اچھی چیز ہے کہ سیاست سے آپ جس چیز اپنے ملک کے لیے سیاست کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے مفاد کے لیے, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. میں ڈینش کی بھی مثال دوں گا آپ کو, سویڈن کی بھی, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں. ہاں ان میں بھی بڑی چیزیں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن یہ میں پھر ادھر آ جاتا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جی آپ تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کو ووٹ دیں, اور یار یہ میں پڑھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بات کی قدیانیوں کی. دوسرا میرے خیال آپ کا غالباً سوال ہوگا یہ اپنے جو پکشنی ہیں جو ہیں, تو اس میں یہ کہہ لیں جسے کہتے ہیں سنی پکشنی جلے کہہ لیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ منظم طریقے سے کریں اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمپین, اس طرح نہ کریں کہ جیسے انہوں نے کہتے ہیں کوپن ہیگن میں کیا. جو بات غلط ہے اس کو تو ماننا چاہیے نا. اگر کوپن ہیگن میں 5 لوگ دوست ہمارے الیکشن ہار گئے, بہت بڑی بات ہے یہ, تو اس کے بجائے کہ اگر یہ میں بات کر رہا ہوں غصہ کرنے کے, اس کی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے, جیسے یہ لوگ ڈینش لوگ کرتے ہیں, سویڈش لوگ کرتے ہیں, بڑی خوشی سے سنتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہارے ہیں اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, لیکن ہمارے یہ لوگ بہت کم اس یہاں کے بھی جو تیسری چوتھی جنریشن ہے, پھر چوتھی جنریشن تیسری بھی اور چوتھی بھی کافی کافی بہتر آ رہی ہے اور آئے گی, جو آگے آ رہی ہے چوتھی تو شروع ہو گئی ہے, اور میرے خیال اگلے 10-12 سالوں تک وہ کافی بہتر ہوگی, اور وہ اس کو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح کریں گے. برملا بالکل, وہ اگر کوئی چیز غلط کی ہے انہوں نے اس کا برملا وہ جو ہے نا میڈیا پہ آ کر پریس کانفرنس بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں, تاکہ آپ کے ووٹر نیکسٹ ٹائم آپ سے بیزار نہ ہو اور آپ کو ووٹ دیں. اور سویڈن کا بھی یہی ہے, اگر یہ اپنے اس کمپین میں بالکل یورپ کی طرح جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں ادھر کی جو پولیٹکس یہ کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اپنی کمپین کریں گے, تو آپ کے الیکشن جیتنے میں کافی چانس ہو جائیں گے, آپ کو ووٹ دیں گے لوگ, آپ کو سنیں گے. لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں, کہ آپ اس میں جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں عمل درآمد کرا سکیں گے, کیونکہ آپ وہی چیزیں بتائیں نا جس میں آپ عمل درآمد کرا سکتے ہیں, کیونکہ 3-4 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں جیسے سے, جیسے کہ ڈنمارک میں بہت سے لوگ آؤٹ ہوئے ہیں, پاکستانیوں کے علاوہ عربی آؤٹ ہوئے ہیں, ترکی کردش آؤٹ ہوئے ہیں, سیاست سے بالکل ہی ختم کر دیا لوگوں نے. اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ ایک دفعہ بول لیں گے, دو دفعہ بول لیں گے, تیسرے دفعہ لوگ آپ کا فارغ کر دیں گے. تو آپ وہ چیز کریں جو پارٹی سے آپ بات کر کے جس پارٹی کے لیے ٹکٹ لیا آپ نے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, یہ آپ اپنے ووٹر کو بتائیں, نہیں کر سکتے وہ نہ بتائیں. اور ووٹر آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کو صاف بتائیں کہ اس کا میں کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا.
1: بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں, اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں, آپ نے بڑی یہ میں سمجھوں کہ بڑی خبر ہے اور آپ نے یہ بریکنگ نیوز آج دے دی ہے کہ یہاں جو ہے وہ اپنا سنی قادیانی الیکشن ہو رہے ہیں. ووٹ تو سنی کا بھی برابر ہے, قادیانی کا بھی برابر ہے, شیعہ برادری کا بھی برابر ہے, یہاں تو ووٹ سب برابر ہے.
2: میں نے آپ نے یہ کہا تھا کہ دوسرا, یعنی میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستانی ہیں,
1: آپ نے انفارمیشن کی حد تک بات کر رہے ہیں نا,
2: انفارمیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں. میں نے یہ بتایا تھا کہ
1: متفق ہونا ضروری نہیں ہے,
2: نہیں ہے, میں یہ بات کر رہا تھا کہ एक जो जो कहते पाकिस्तानियों का वो जो भी है उनका फिरका उसको छोड़ें, वो मुनज्जम है, मुनज्जम होके और उनके चांस ज्यादा है इलेक्शन जीतने में। उनके पार्टी जो जिस जिस पार्टी से वो खड़े हैं वो तीन है या चार है या दो, मालूमों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये शक है कि वो उन वो सीटें निकालेंगे, क्योंकि वो मुनज्जम होकर काम करते हैं, वो ये एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते। पाकिस्तानी है वो भी, गरीब बात, हमारी तरह उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हमारी ममालिक से उनका ताल्लुक है, तो ये तो फिर पाकिस्तानी हुए ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आप मुनज्जम होकर कर सकते, अपनी कंपेन चला सकते हैं या अपना अपनी सियासत कर सकते, इधर क्यों आप की जो है एक बात क्या कहते हैं मुंह के ऊपर और होती है, पीठ पीछे और होती है, दरमियान में और होती है, तो इधर तो फिर आप जो है ना फिर मुनज्जम ना होए। मैं इसकी मिसाल मेरा अपना मुल्क जो है डेनमार्क, उसकी बार बार दे रहा हूँ, क्यों देता हूँ बार बार, कि उसमें पांच लोगों का हारना बड़े इलेक्शन में बहुत बड़ी यार बात है, छोटी बात नहीं है। जो जो मुल्क ये सुनता है ना यूरोप के, उधर भी पक्ष नहीं है, वो हैरान रह जाते हैं, किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता लगता है, कहते हैं ऐसे हुआ है, मैंने कहा जी ऐसे हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी उसका जाला नहीं अभी तक किया कि क्या हुआ है, उसकी अभी शर्म नहीं आई, या मुझे तो आ गई है कि शर्म आ जाए कि यार ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसे क्या किया आपने, आप इधर की सियासत कर रहे हैं, इधर की सियासत में आप इधर ही की सियासत के लोगों से मिलें, इधर की ही कंपेन चलाएं और इधर ही की मशहूरी करें, इधर ही की पार्टी की। जो ही आप किसी के पीछे लग के दूसरी दूसरे मुल्क की सियासत को करेंगे आप अपनी कंपेन में शामिल, लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, वोटर आपको देख रहा है, तीसरी जनरेशन चल रही है वो आपको देख रहा है, अब ये दूसरी पहली जनरेशन नहीं है जिसमें आप ओए छड़ो यार कोई नहीं गल, ओए पुत्र वोट पा दे, अब ऐसे नहीं है। मेरे घर के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, अभी 13 को जाना है ना, मैंने किसी पार्टी को डालना है, मेरे बच्चों ने किसी पार्टी को, मेरी बीवी ने किसी पार्टी को डालना है, और मैंने बात भी की कि कहते पापा तू खा एक फचल लॉस वो उसके बीच टाइम सो खत्म बात हो गई, मैं
1: बिल्कुल,
2: खत्म,
1: क्योंकि
2: मैंने
1: जमहूरी मुल्कों
2: मैं
1: में रहते हैं जमहूरी तरीके से आप बात करें, चूंकि इसको
2: मैंने
1: आप एनालाइज कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, टैक्सी ब्रांच का भी आपको बहुत तजुर्बा है, इसको हर चीज़ को आप समझते हैं जानते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई चली गईं ख़त्म हो गई, और अब जो है वो एक नई कंपनी जो आई है उस पर भी जो है उनकी अब गाड़ियाँ हमें हर जगह नज़र आती हैं, और ये भी पता चला है कि कभी वो एक शहर में जाती हैं कभी दूसरे शहर में जाती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये आपसे इन्फॉर्मेशन से बेहतर कौन दे सकता है, या हमारे थिंक टैंक से तुकीर शाह साहब देते रहते हैं जी शायद।
2: जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब कोई कंपनी या पहले तो उबर आई, उबर बहुत बड़ी कंपनी है, तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसी की तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। डेनमार्क में जब उबर आई मैं पहले नहीं जाता, 2013-14 में इलीगली तरीके से यहाँ के टैक्सी कानून के मुताबिक नहीं आई थी, 2013-14 की बात है, मैं उधर नहीं जाता, वो लंबी बहस हो जाएगी, क्या हुआ फिर वो यहाँ से निकल गए ये सबको पता है। अब 2025 फरवरी रिसेंटली ऑलरेडी इनकी 2024 के अक्टूबर सितंबर में ऑलरेडी कुछ लोगों के यहाँ से इनके साथ रवाबत हुए थे उबर के साथ, कि कैसे आपने आना है, ये भी छोड़ दें ये सबको पता है। 2025 फरवरी में इन्होंने बकायदा आगाज शुरू कर दिया उबर का, ड्राइवर एक टैक्सी कंपनी थी छोटी सारी जिसके अंदर गालिबन 40-50-60-70 टैक्सियां थी, यहाँ 100 कर लें, उनके साथ मिलकर छिल खुद कहते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच होके आप आ सकते हैं, खाली उबर नहीं की इजाजत नहीं मिली थी उनको, यानी कि इससे गायन उबर, यानी कि बिल्कुल खाली उबर जो है क्लीन उबर सिर्फ खाली वो चलाती है, लेकिन उनको किसी किसी किसी कंपनी के साथ सहारा लेके उनको आना पड़ा, और वो आए साथ ही उन्होंने यहाँ पर धूम मचा दी। उधर भी हमारे जो पाकिस्तानी वॉनमैन है, मैं भी इंक्लूड हूँ, अपनी बात भी करूंगा, वाले साहब रहे हैं सब समेत, जो मैंने सुना बल्कि सुना अपनी आ, आ, आ, अपने कानों से सुना, लोगों ने कहा ओ कुछ नहीं होता उबर है इसके ये ऐसे, मैंने बड़ी सेल्स कैंपों के अंदर भी सुना, वहां पे भी कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, पाकिस्तानी जैसे स्टाइल है हर चीज में रिलैक्स कर जाएं। पता क्या हुआ फिर, उबर ने जनाब इनको ना फरवरी में आई, पर जून जुलाई में जनाब इनका एग्रीमेंट हो गया सबसे बड़ी कंपनी डैन टैक्सी के साथ, यानी जो पहले कुरियर होती थी डैन टैक्सी, जो पूरे शेलन में है, उसके बाद पूरे यूलन में और पूरे स्वीडन में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है। एग्रीमेंट क्या हुआ, उन्होंने खरीद ली, ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली। ये किसी को नहीं पता कितने मिलियार्ड की खरीदी है या कितने मिलियंस की खरीदी है। कंपनी बहुत बड़ी है, उनके पास इनकम है, इन चेक जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनके पास अवैध खून है, यानी कि उनके पास कंपनी के खोचो खोसला, उनके पास DSP है, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ये जो हैं उनके पास। ये सिर्फ खाली टैक्सी नहीं होती जैसे आप मैंने बुक कराई है, ये तो कोई इसके ऊपर नहीं आपकी कंपनी चलती। इनके पास बड़े बड़े जो है ना आउटसेल एग्रीमेंट हैं डेनमार्क में, खाली कोपन एग्रीमेंट नहीं है, पूरा शेलन, उसके बाद यूलैंड और फ्यून सारा, बहुत बड़े बड़े कितने मिलियंस की है, 200-300 कपल ऑफ 1400 मिलियंस की इनकी आओ चले हैं, वो उन्होंने खरीद ली ऊबर ने, और ऊबर ये जो ना पूरी मार्केट तकरीबन वो ले गया तकरीबन। अब क्या हुआ कि 2026 में, यानी कि जून जुलाई जून में ये इसकी बाजगश्त हुई, ग्रीन SM, यानी कि वियतनाम टैक्सी तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका असल नाम जो है ग्रीन SM है। ग्रीन SM ऑलरेडी जो है ना वियतनाम और चाइना और इंडिया और इन मुल्कों में आ चुकी है 2025 में। यार वियतनाम तो पहले की चल रही थी, और ग्रीन टैक्सी ग्रीन SM जो है, इसके बाद स्वीडन, इसके बाद जर्मन, इसके बाद ओस्लो, स्वीडन इसी साल जा रही है। और उन्होंने जो मुझे जो मैंने देखा सुना है, उन्होंने ये चीजें कोई फ्री नहीं होती, उन्होंने ये डेनमार्क में हेसल हॉल, यानी कि एवल हॉल, जो इंडस्ट्री कुछ है सबको पता है, उन्होंने वहां पर जो बहुत बड़ा ले है, जो इसे स्वीडिश में कहते हैं लॉगर, जो ले है वो बहुत ही बड़ा, मैं समझ तो 5-6 हजार करोड़ मीटर से ज्यादा कर लें बार भी, वो उन्होंने पहले तो ये समझे थे कि उन्होंने लाया की है, लेकिन जो मैंने पूछा है उधर उनसे, उन्होंने कहा उन्होंने खरीद लिया है, तो हो सकता है खरीद लिया हो, तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो उसके उसी को पीछे से या आगे से तोड़ के तो उसका ब्यूगा करने लगे हैं, तो उसके अंदर उनको काफी जो है ना उन्होंने उसको एडजस्टमेंट करनी है। एक तो ये हो गया। अब ये 600 गाड़ियां जो है ना, ये इनकी तकरीबन ऑलरेडी 400 या 300 या के करीब, ये आधी से ज्यादा गाड़ियां इनकी ऑकुपाइड हो गई हैं, जो चढ़ गई हैं, ड्राइवर इनके तकरीबन 500 से ज्यादा जो है, 500 के करीब जो है ना एग्रीमेंट बन चुकी हैं, किसी ने सितंबर में शुरू करना है, किसी ने अगस्त में, किसी ने नवंबर में, वगैरह वगैरह, और वो साथ में कोर्स भी करा रहे हैं साथ में। अब किसी कंपनी ने बाहर से इतनी बड़ी इन्वेस्ट की है, वो खाली इन्वेस्ट जो इधर डेनमार्क में की है, स्वीडन में करने जा रहा है, जर्मन में है, और यूरोप के मुल्कों में करने जा रहा है, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि उसके पीछे स्टेट नहीं है, उसके पीछे जो स्टेट है वो उन्होंने थपकी नहीं दी? ये ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मुल्क जो है वो आपको वेलकम ना करें और आपकी हेल्प ना करें, जो जो चीज उन्हें जो जो चीजें उनके चाहिए होती हैं, जैसे कि अब वो भी चाहेंगे कि हमारी हमारी भी औचले हों कमोनों के साथ, फ्लेक्स के साथ, कॉन्ट्रो खोचले हों, ये वगैरह वगैरह ये चीजें। मेरा ये ख्याल है कि वो इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं और वो ये मार्केट लेने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे क्यों, लेकिन उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उनको वो लोन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल है उनके, और वो इसी पे काम करने लगे हुए हैं। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ, आपने बात की थी वोनमैन, पाकिस्तानी, अरबी, तुर्की, डेनिश, जितने भी वोनमैन है, हम अपनी भी बात करेंगे, पाकिस्तानी ये सबसे ज्यादा है। इनका फ्यूचर मुझे कोई अब अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मार्केट उन्होंने लेके जानी है, क्योंकि वो खुद ही वोनमैन है। एक तो ये हो गया कि वो इसे उर्दू में आप आसानी से ये कह लें कि वो एक ऐप नहीं है ग्रीन SM, क्योंकि जो ऊबर है वो एक खाली ऐप है, वो आप ऐप लेते हैं या उसको आप उसका जो 20% या 18% या 25% उसका आप पे करते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी अपनी होती है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा, लेकिन जो ग्रीन SM है गाड़ियों की अपनी है, वो खुद ही बोनमैन है और खुद ही वो गाड़ियां भी बनाते हैं अपनी, वो कंपनी उनकी गाड़ियां भी अपनी ही कंपनी में बनती हैं, और वो कंटेनर के कंटेनर यहाँ यूरोप की तरफ रवाना है, जिधर जिधर उन्होंने ये करना है, पड़ाव डालना है। अब ये जो चीज है, ये मुझे जो शक है, ये ये वोमेन की मोनोपोली खत्म करने के लिए इन्होंने सिर्फ डेनमार्क नहीं, दूसरे मुल्कों में भी जिसे कहते हैं आया है ना चाक्षा आया वोमेन, ये उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि इसको अपने पास रखो, अपने कंट्रोल में कर लो। इस तरह की उन्होंने कंपनी को दावत दी है जो ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुकी थी, तो उनके साथ ये बमामला जो है इनके 1-1.5 साल से बैक चैनल चल रहे थे। ऐसे कोई नहीं आ जाता अचानक, ऐसे कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करता कहते हैं हेल मिलियन या इन मिलियार्ड। और आपको पता है कि जो 400-500 ड्राइवर अभी चढ़े आए हैं उनको अगले महीने तनख्वाह भी देनी है, और वो तनख्वाह अभी कोई उनकी इनकम नहीं हुई, अभी उनकी ऑप्शनें जो हैं चल रही हैं या नहीं चल रही वो बात की बात है, वो तो आपको पता लग जाएगा सबको। लेकिन उन्होंने लोन तो देना है, कुछ लोगों को लोन मिल गया जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई में शुरू किया था काम, अब तो अगस्त का एंड आ गया तो उनको लोन मिल गया मुझे सुनने में, और उनको पूरा लोन मिला है। मैंने खुद पूछा है, मैंने पूछा आपको लोन मिला है, उन्होंने कहा जी मुझे लोन मिल गया जो इस महीने के उनको मिलना था और मैं जुलाई के, तो वो बहुत से लोगों को मिल गया।
1: मतलब है कि ये पैसा सारा सिस्टम में आ गया, इस पर लेफ्ट राइट नहीं हो सकता।
2: मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें लोन मिला ना, क्योंकि हो एलआर के साथ उन्होंने ये जो लोन जो यहाँ के सनी के लोन नहीं तनखाओं के जो कानून है कवानीन है पेंशन ऑर्डनिंग के साथ उन्होंने मिलके बनाए हैं कि इसमें कोई हंकी बैंकी नहीं है, उसमें मिलके बना के उन्होंने वो बैठे हैं उनके साथ बनाए सारा कुछ। उसमें ये जो अभी जो पैसे जो इनके चंद 100-150 जो पहले थे इनके शोफेयर उनको लोन मिला ना, वो हालांकि उनकी इनकम कोई नहीं हुई ड्राइवरों की, बहुत कम इनकम ना होने के बराबर, क्योंकि उनके ऐप में भी छुआ नहीं है जो आए, वो कल छुआ ही उठा रहे हैं अगर वो उठाते हैं, और अपने 7.5 घंटों में 7.5 घंटे उसके आधा घंटा पाउस का 8 घंटे 7.5 घंटे में अपने काम करके जो बनाया है वो ही है, उसके ऊपर वो उनके कोई इतराजात नहीं है इस वक्त। और पहले बाद में भी जब उनके पास ऐप में छुआ आ जाएंगे जो उनकी औचले होंगी, आपने हर छुए को यस करना है, आपने ना ही नहीं करना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं आपको वो तनखा दे रहे हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर रखी हुई है कुछ परसेंटेज, यानी कि आप किसी को वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वॉशरूम भी आ जाता है या वगैरह वगैरह 2-4 मिनट के लिए तो आप उसमें पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपका आधे घंटे का पॉज एक लहजा है, लेकिन जब आपको छुआ आ रहा है आपने यस करनी है, क्योंकि आप तनखा ले रहे हैं उनसे पक्की, यानी कि फेस्ट लोन ले रहे हैं आप उनसे, तो आप मजाज नहीं है कोई नए करने के किसी छुए के, जब जब ये शुरू होगा उनका बकायदा, अभी तो चल रहा है। और उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लोन मिले हैं 170-180 जो शुफे पहले के थे वो कितने मिलियंस होंगे, वो उन्होंने अपने जो उनके पास जो उनका अकाउंट या जो भी वो पैसा लेके आए हैं अपने पास से दिए हैं। मैं ये बता दूं कि अपने पास से कोई नहीं देता, ये तो अभी दिए हैं, जब उनकी औचलें वगैरह चल जाएंगी, जब उनके साथ कमूनों के साथ या जिधर भी वो करना चाह रहे हो जाएंगी, कितने वो मिलियंस की इतनी कमूने हैं, सैकड़ों कमूने हैं यहाँ पर शेलन में, जब उनके साथ हो जाएंगी, अगर आदियों के साथ भी हो जाएं, जब हो जाएंगी, तो फिर ये जो पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया है, ऐसी जो जो बिजनेसमैन काबिल बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो फिर उनका वापस डबल से ज्यादा वापस आएगा। तो ये है उनकी जो है प्लानिंग।
1: इसका मतलब है उन्होंने अपना जो इन्वेस्ट किया उसको सबसे पहले सेव किया है, गवर्नमेंट के साथ जो है अपनी बातें कमून के साथ अपने एग्रीमेंट किए हैं जहाँ से ये सिस्टम चलता है, अब वो जो है कोई पैसा जो है वो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कंपनी का।
2: देखिए जी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये किसी को उन्होंने नहीं बताया, यहाँ पर किसी मीडिया को नहीं बताया कि अभी फिलहाल बहुत से लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे आए, किसने कौन इनके पीछे है, ये सिर्फ क्यास रही हैं। लेकिन जो आदमी आप जैसा और यहाँ पर सब लोग अकल आप जैसे लोग अकल बूझ रखते हैं कि ये तो खुद भी सोचे ना कि जब आप 1 दिन 10 दिन 1 माह 1.5 माह हो गया आप देख रहे हैं तो फिर पता आपको लग जाता है, जब आप अंदर भी जाते हैं पूछते हैं थोड़ा बहुत तो आपको ये पता लग जाता है कि ये इसके पीछे स्टेट इन्वॉल्व है, वो साथ है। ऐसे ही दूसरे मुल्क में आप अपना मैं अगर बिजनेस लेके जाऊं मैं कहूं जी मेरे पास है 1 बिलियन डॉलर है मैं यहाँ बिजनेस, आपकी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आपकी स्टेट करेगी वो कहेगी पैसा आ रहा है, आपकी मदद करेंगे, आपको जो जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे आपके वगैरह वगैरह, तो इसी तरह
1: फैसिलिटेट किया जाता है। चलिए शायद आते हैं इसी तरह, इसी तरह जिस तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं, पार्टियों में किस तरह लड़े जाते हैं, ये जो कारोबारी लिहाज से जो लोकल ये टैक्सी चलती है इसका क्या सिस्टम होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें चली जाती हैं, شاید ہمارے ملک میں جہاں بھی پوری دنیا میں ہماری سیاسی پارٹیاں ساری خود کفیل ہیں، پورے ملکوں میں ان کی بھی ٹیکسیاں وہاں موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پارکنگ پلیس ہیں، ساری پارٹیاں یہ پارکنگ پلیس ہیں، یہ سیاستدانوں کی ٹیکسیاں ہیں، ان کی جو ہے وہ پارکنگ کی جگہ ہے. نہ کوئی ہمارا ممبر بنا پارلیمنٹ میں، کوپن ہیگن کی بات کروں گا، اگر ڈنمارک کی بات کروں گا، سویڈن میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ممبر بنتے ہیں، پارلیمنٹ کے بنتے ہیں، تو کہیں بھی ہم فٹ نہیں ہو رہے. اب پاکستان کی ساری چیزوں کو ملا کے دیکھ رہے تو لیکن زیادہ سیاست جو ہے وہ پاکستان کی جاتی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سیاست کو پاکستان کو؟
2: میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے سویڈن کے الیکشنوں کی بات کی تھی اور ڈنمارک کے، میں نے یہی بتایا کہ جب تک آپ اپنی ملک پاکستان کی جو سیاست ہے، اگر یہ کوئی کسی کو اگر غلط لگے، میں اسے معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ سامعین سن رہے ہیں، یار پاکستان کی سیاست آپ کو سب کو پتا بہت گندی سیاست ہے. وہ گندی سیاست کو وہ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے ہزاروں سال بھی کم ہے. تو وہ کیونکہ پاکستان کی سیاست تو ہر سیکنڈ بعد بدلتی ہے، وہ سیاست انہوں نے ہی. تو آپ جب اس سیاست کو، میں یہ بتا رہا ہوں ادھر جہاں رہتے ہیں، ادھر بھی کریں گے تو پھر یہاں پر آپ اپنا ہی مذاق بنوا لیں گے. لوگ مذاق کرتے ہیں دیکھ کے، یہ کوئی خوشی نہیں لوگوں کو ہو رہی ہوتی، دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے لوگ. سے مراد ہے کہ پاکستانی بھی اور دوسری نیشنیں بھی، کسی کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسخرے سارے. میں آپ نے بات کی پاکستانی جو سیاست کرتے ہیں یہاں پر یورپ میں، میں حالی ڈنمارک کی بات نہیں کر رہا. تو وہ پھر جب آپ اس طرح کے مسخرہ پن کریں گے تو لوگوں نے، تو آپ لوگوں میں، آپ کمیونٹیوں میں، دوسری کمیونٹی میں مذاق بنائیں گے. یہ جو ڈینش ہیں، سویڈش ہیں، نارویجن ہیں، جرمن، جہاں بھی چلے جائیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو سارا پتا ہوتا ہے، وہ یہ لوگ خاموش طبیعت کے ہیں، خاموشی سے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ باتیں نہیں زیادہ کرتے، جنرلی بات کرتا ہوں. ان میں بھی لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن وہ جنرلی ایسے نہیں ہیں. یہ لوگ باتیں نہیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں ایسا نہیں تھا، ان ملکوں میں گندی سیاستیں نہیں تھیں، ان ملکوں میں جبریت نہیں تھی. فرونی 100 سال پہلے ایسے ہی تھا، 100 سال پہلے یہ انہوں نے یہ سسٹم جو ہے نا لڑ لڑ کے قوموں نے ان کی قوم لڑی، ان کے لوگ لڑے، بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے لوگوں نے. حالی جنگیں نہیں لڑی انہوں نے ایک دوسرے سے، انہوں نے سیاسی، یہ جو سیاسی اس کے لیے جمہوریت کے لیے لڑے. یہاں تو بادشاہ تھی پورے یورپ میں بادشاہ تھی پورے. آپ کو پتہ ہے، آپ ہسٹری پڑھیں جا کے، سویڈن کی بات کر لیں، ڈنمارک کی بات کریں، یہاں تو ظلم تھا. یہ بادشاہ جو ہوتی ہے نا ظلم ہی ہوتا ہے. یہ ایک بندہ سب کو کہہ رہا ہے جو میں نے کہنا وہی آپ نے ماننا ہے، ادھر ایسے تھا. لیکن پھر یہاں قومیں لڑیں، لڑنے کے بغیر، آپ قربانیوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سسٹم ہی بادشاہ کے سارا تھا قبضے میں. بادشاہ جو ہے یورپ کا، یعنی کہ سویڈن کا یا ناروے کا، اس کے تھا انصاف وہی کرتا تھا. جج جو ہے وہ انصاف جس اس نے کرنا ہے وہ بادشاہ کے حکم پر اس نے کرنا ہے، تو کہا ہے کہ جج. ادھر ایسے تھا، پھر یہ لوگ لڑے، ان لوگوں نے قربانیاں دی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال لڑتے رہے، آخر میں یہ ان کی جیت ہوئی. گھر بیٹھنے سے، ہاتھ میں ہاتھ باندھنے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، مسخرہ پن، فضولیات، یہ چیپ حرکتیں، یار یہ کیا ہے؟ کیا ہو آپ؟ جب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکلو گے آپ ایسے ہی رہو گے جیسے 1400 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ جہلیت ہے، آپ اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے. 1400 سال کی جو جہلیت سنتے تھے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے، بلکہ نکل گئے ہو. تو یہ ہے کہ آپ عید ملکوں میں رہ کے ان قوموں سے جب نہیں سیکھ پا رہے تو یار پھر تو میں کیا اس کے اوپر کروں تبصرہ، مزید تبصرہ ہی پہ رہ جاتے ہیں.
1: تبصرہ کیا، آپ دیکھیں نا منافق آدمی جو ہوتا ہے جس کے منہ پہ ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے دوسرے پہ چلا جاتا ہے. تو یہی سیاسی پارٹیوں کا ہے،
2: یہی ہمارے جو سسٹم کا المیہ ہے کہ آپ دیکھو کیا کر رہے ہو. میں غالباً یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں ادھر سویڈن کا بھی، چلو بات کر لیتا ہوں. یار سویڈن کے اپنے ملک کی جہاں رہتا ہوں میں، جی فوٹو لگ گئی ہیں، ایمبیسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایمبیسی کو الودائی، اگر میرے سے اردو کا الودائی، اس کو سلام پیش کر رہا ہے، فوٹو لگا دی ہے. یار کیا ہو گیا ہے؟ यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं, यूरोप के जो एम्बेसडर उधर गए होते हैं दूसरे मुल्कों के एम्बेसियों में, पता ही नहीं किसी को तक कब आ गया क्या ही नहीं। वहां के जो उधर के लोग हैं जिन मुल्कों में, स्पेन में डैनिश रहते हैं, पता ही किसी को डैनिश को नहीं है। स्पेन में डैनिश रहते हैं ना, अमेरिका में डैनिश रहते हैं, उधर एम्बेसडर है ना उनके, आते हैं, किसी को पता, देखिए किसी किसी किसी डैनिश की फोटो आम शहरी की, एम्बेसडर को सलाम कर रहे जाके, फोटो लाती फेसबुक पे, हाय यार देख के मुझे हंसी आ जाती है, क्या कर रहे हैं, कभी हो गया यार, चले गए हो आप कोई अपने काम से, उन्हें क्या फाड़ के लाती, चलो जी हो गए, सलाम जराना पेश, वो तू कौन है जराना, तू कौन होना है जराना पेश करने वास्ते, जोहराना, ये अगर उर्दू मेरी गलत है तो जोहराना इसी को कहते हैं ना खाने को, राजा साहब जोहराना जी आपने पेश कर दी है,
1: बिल्कुल
2: मास्टर
1: ठीक
2: जा रहे
1: बात
2: हैं,
1: बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है, आप पैदा
2: ये
1: यहाँ हुए
2: बात,
1: उर्दू बोल रहे हैं।
2: ये कोई बात है करने वाली यार, ये मैं देख कर आना तो फोटो लग गई है यार, इन चीजों से निकल आओ, एम्बेसडर आया एहतराम के काबिल है, जा रहा है, खत्म हो गई बात, पैसे हमारे हैं, खजाने से निकल रहे हैं, तू कौन है जोहराना पेश करने वाला, नो इस तरह आपके मुल्क में ना जो ये ना ये काम खराब हुए हुए हैं, नीचे दिखाने के लिए दूसरे को,
1: इसका हल क्या है,
2: मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं
1: इसका
2: कर
1: हल
2: रहा, मुझे
1: बताएं,
2: बता
1: हल
2: सके,
1: क्या है, आप चूंकि यहाँ पैदा हुए, आप
2: मैंने
1: भी
2: मैंने
1: बोलते
2: अभी
1: हैं,
2: इसका
1: स्वीडिश भी
2: अभी
1: बोलते हैं,
2: अभी
1: डेनिश भी बोलते हैं, इंग्लिश भी
2: मैंने
1: बोलते
2: आप
1: हैं।
2: मैंने आपको अभी इसका हल बताया है, जब तक आप दूसरे कौमों की तरह, दूसरे जो लोग हैं और भी है ना उनकी तरह मुनज़म नहीं होंगे, लेकिन इन्हें मुनज़म होना नहीं है, मुनज़म नहीं होंगे आप ऐसे ही रहेंगे, आप ही आपने खुद ही कहा है, मैं मुनाफ़कत, हाली मुनाफ़कत नहीं है, झूठ मुनाफ़कत मकारी, तीन चीजें, मकारी आपके मुंह के पर नजर आ जाती है जब वो मुस्कुरा रहा होता है कि ये मकार आदमी, मुनाफ़कत तो है ही है, मकारी सबसे बड़ी चीज है, फिर झूठ, ये तीन चीजें आप मेरा वो डीपी देखें, बड़ा
1: शायद एक
2: मशहूर है मेरा
1: बात याद रखें कि पिछले दिनों बहस हो रही थी कि बीमारियां होती हैं ना, एक मालिया खौलिया की बीमारी होती है, हम इसी को लेते हैं, कोई ज़हनी मरीज किसी को कहता है, लेकिन और भी बीमारियां हैं, अगर देखा जाए तो बंदों का कसूर भी नहीं होता, वो चूंकि वो
2: बिल्कुल नहीं
1: बीमारियां
2: होता।
1: उनको लगी होती हैं, आप उनका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए
2: अभी
1: साइकियाट्रिस्ट जब बैठता है ना, वो उसको घंटा घंटा दो दो घंटे पर टाइम देता है, खाली उससे बातें करते रहते हैं, वो जहनी मरीज इस तरह के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इसको ये बीमारी है।
2: राजा साहब अभी आप को आप मेरी वो डीपी जो है ना उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो काइंडली वो डीपी जो है मेरी उसका जो सामने जो मेरा वो है उसको पढ़ें, अभी पढ़ें तो, ताकि आपको मैं बताता हूँ क्या है वो।
1: बड़ी अच्छी बात है और आप अक्सर बात इस पर करते भी रहते हैं, लिखा हुआ है आपकी जो शिनाख्त है जो आपने अपने लगाया डीपी लगाया हुआ है, मुनाफ़िकत दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह पे ऊपर दोस्ती का नाम है, ये तो एक ऐसा
2: यस
1: खूबसूरत अल्फाज हैं, शेर लिखे हैं, ये सबके लिए, ये किसी की मुखालफत में नहीं है, किसी के हक में नहीं है।
2: ये चीज, जब ये चीज आप खत्म कर देंगे ना, ये जो कौम है पूरी, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है मुश्किल काम है हमारी, खासकर कौम हम लोगों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाएगी ना, ये जो मैंने अभी अब लिखा हुआ है ये सारा, तो आप जो है ना राह रास्त में आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल और कठिन है, ये नहीं पता कब है, शायद 100 साल लग जाए, 100 साल बड़ा, शायद 1 साल में खत्म हो जाए, लेकिन 100 साल में पता नहीं, हम रहे, हम तो नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, तो 100 साल किसने देखा है, लेकिन वैसे भी ऑलमोस्ट हमें
1: आप
2: 78 साल
1: देखिए ना,
2: हो गए हैं।
1: इस जमहूरी निज़ाम में अब हम जमहूरियत की भी नफ़ी करना शुरू हो गए हैं, ये भी प्रोपगंडा हम लोग शुरू कर देते हैं, इस जमहूरी नाम रहते हुए अगर आपको वोट मिले आप मेंबर बन गए, आपको वोट मिले तो अभी रीजन के मेंबर मिल गए, अगर आपको वोट मिले हैं तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, पार्लियामेंट को आप वोट मिले तो आप वज़ीर आज़म बन गए, ये तो एक जमहूरी निज़ाम है, कौन किसी को रोक रहा है।
2: कोई किसी को नहीं रोक रहा है, और राजा साहब एक और बात, जब आप इलेक्ट हो गए आते हैं ना, अवाम आपको सिलेक्ट करती है, तो फिर इलेक्ट हो गए हैं आप, तो आप उसमें आ गए हैं, तो जब आपने किसी वध में, ये इधर की बात कर रहा हूँ अपने यूरोप की, तो हमारे जो ओवरसीज पक्षनी है, भाई हैं बहने हैं, तो वो जो वादा करते हैं ना, वो फिर अपना वादा 100% नहीं तो कम से कम 80-90% पूरा किया करें अपनी अपने अपने क्या कहते हैं वोटरों के साथ, ये मेरा बार बार कहना है। तो मैं आप वाली बात फिर, जब तक आप अपने सारे ओवरसीज पूरी दुनिया में, जब तक आप पाकिस्तानी गंदी सियासत, गंदी तरीन सियासत है, अच्छी सियासत भी लोग करते हैं, लेकिन गंदी तरीन सियासत को आप खत्म नहीं ना करेंगे, आप तरक्की भी नहीं कर सकते किसी चीज में। यूरोप में भी पीछे रह जाएंगे, हर एक से, हर महाज में पीछे रह जाएंगे, नहीं कर सकते तरक्की ये, क्योंकि यही अल्लाह ताला का असूल है, यही कानून है। अल्लाह ताला के असूल और कानूनों को तो नहीं आप रद्द कर सकते ना। अल्लाह ताला तो देख रहा है हर वक्त, अल्लाह ताला तो आपको लम्हा लम्हा देख रहा, सुन रहे, उसके साथ तो नहीं ना आप कहते मकारी यारी कर सकते। यारी भी तो करते हैं ना हम लोग,
1: लेकिन अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया क्या वो काम हम करते नहीं है?
2: हम वो काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया हम वो काम करते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने जिन चीजों से मना किया वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। लेकिन ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये दीन को भी इस्तेमाल करते हैं यार, दीन को भी, दीन भी आज, कुरान भी आपको आज कल पैसों में बिकता है, दीन भी आपका बिक रहा है पैसों में। यानी कि सुबह दीन को इस्तेमाल करता है, रात को शैतान बनाता है बंदा, वही दोबारा सुबह या रात को शैतान है वो पूरा। सुबह वो दीन को इस्तेमाल कर रहा है टोपी पहन के, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो क्या खत्म हो रहे हैं यार मी शरीफ के फलां जगह, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार दीन को तो ना इस्तेमाल करो, फिर अपना दीन आप अपने पास छुप के अल्लाह के साथ करो, इसका चर्चा ना करो ऐसे। चर्चा वो करते हुए अच्छा लगते हैं जो माशरा सुलझा हो, जिसमें कोई हलाकियात हो। जिस माशरे में हलाकियात नहीं, वो अपने दीन का क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि उसने तो अपने आप से शुरू करना है। मैं कैसे चर्चा करूं अपने दीन का, हमारे हमारे हमारे मुल्क में चले ले लेते हैं, कोई हलाकियात ही नहीं है, बेहयाई उधर उरूज पर, उस पर बात करेंगे तो हंसेंगे आगे से। ये तो यार आप क्या बात कर रहे हैं शाह साहब, यहाँ तो ये तो आम हो गई है चीजें यहाँ पर।
1: आप मुफ्ती कवि कितने देखे हुए हैं पाकिस्तान में?
2: क्या अब मैं क्या बात करूं इनके ऊपर?
1: ये देखे, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, शायद ये देखें, ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए ना, ये अब सवाल करते हैं, जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ को देख रहे हैं तो सवाल करते रहे, मुनाफ़क़त की बात करते हैं। आपने लिखा हुआ है कि मुनाफ़क़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं और छुपा के नहीं कर रहे। आप देखें ना मुनाफ़क़ क्या होता है, कई दफ़ा हमने इस पर जो है प्रोग्राम किए, कई दफ़ा उलमा ने इस पर बात की। अल्लाह ताला कहता है कि जो मैं मुनाफ़क़ को माफ़ नहीं करूँगा, जो मेरे मुकाबले में खड़ा होता है उसको माफ़, जो मेरे साथ किसी को जोड़ता है मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैं माफ़ कर दूँगा। जन्नत दोज़ख़ किस लिए बना, जन्नत दोज़ख़ को मजाक तो नहीं है, जन्नत दोज़ख़ बनाए गए इन्हीं वजह से बनाए गए हैं, तो ये सजाएं मिलेंगी। वो कोई बंदे कहते हैं जी बस एक बार पढ़ने से 10 हज का सवाब हो जाता है, फिर हज का सवाब पढ़ने का हो जाता है तो खाना काबा में क्यों जाते हैं, आज उधर हज करने के लिए क्यों मक्का मदीना जाते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं,
2: डिसइंफॉर्मेशन। एक बात और ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो।
1: जी जी,
2: एक तो ये चीजें हैं ना, अगर आप मेरी, अगर लोग दोस्त यहाँ पर जो सुन रहे हैं सामीन, वो इसको समझेंगे, आप भी समझेंगे। एक तो हमारे में ये बहुत ज्यादा है, एक इसको मुनाफ़क़त ही कह लें, तल्लुकात की बेस पर

0: होता है, या खासकर डेनिश लोगों को आते हैं, और फिर इस तरह आप ए, जो है ना आपकी मशहूरी होती है, इन चीजों को करें हाईलाइट, बजाय कि आप गंदी सियासत करें, उसे आप हट जाएं। ये बाकी सबके अपना अपना है, एक राय है ना मशवरा है ना
1: जमहूरी
0: किसी को।
1: मुल्क है, हर
0: हाँ
1: आदमी का हक है, उसे हक है, जो यहाँ बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, जहाँ कानून ने इजाज़त दी है कानून कहता है, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी ख्याल करना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
1: एक बंदा कहता है यार मुझे कानून इजाज़त देता है, तो खुद भी कुछ चीज़ें होती है ना, खुद भी बंदा कह लगता है यार मैं किसी के दीन की बात गलत ना करूं, उसका दिल हार्ट होगा, तो ये बंदा खुद भी कह सकता है। अब कानून में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन ये तो नहीं आपने सब कुछ वही करना है।
0: यहां पर मैं ये बात कहते चलूं, आपने चले ये बात कर ही दी है, किसी के दीन के बारे में खासकर हमें ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पहले खुद अपने दीन के मुताबिक चल रहे हैं। जो जो हकामात आपके रब ने और आपके रसूल ने दिए हैं, उसके ऊपर आप पूरी तरह पहले अमल कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हो सकता है। आप किसी के दीन के ऊपर, और वैसे भी हमें किसी हमारे दीन ने ये सिखाया कि आप किसी के दीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म का ये नहीं लगा सकते कि आप ये करें। और जिन मुल्क ममालिक में आप हम रह रहे हैं, डेनमार्क स्वीडन में, हम यहाँ पर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं, हम यहाँ पर आए हैं, जब फिर हमने हमने इनके ममालिक के कवानीन का एहतराम करना, ये हमारे दीन में भी है, ये और दीनों में भी है, लेकिन हमारे दीन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दीन में भी है। आप यहाँ पर जबरदस्ती कोई चीज मसला नहीं, कानून को आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा है लोग शिद्दत पसंदी जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। ये ऐसी है कि जब आप अपने मुल्कों में जाते हैं तो आपके साथ वहां क्या होता है, शिद्दत पसंदी करते हैं तो क्या
1: शायद
0: करते हैं,
1: मैं
0: आपको
1: पता नहीं बात
0: नंगा
1: करने
0: करके,
1: लगूं,
0: नंगा करके लटका के मारते हैं आपको। इधर
1: शायद
0: जब
1: देखिए
0: आप
1: एक
0: आके
1: बात मैं
0: करूंगे
1: करने लगूं कि सारी सियासी जमातों का मंशूर होता है, क्या सारी जमातें अपने मंशूर पर अमल करती हैं जो उन्होंने खुद मंशूर बनाया होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था वो मंशूर ही था ना, और क्या था?
0: बिल्कुल
1: ठीक है वो मंशूर था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर पर हम अमल करते हैं?
0: बिल्कुल नहीं,
1: कोड हम करते हैं। इसी तरह ये जो होता है ना, जब तक आप अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको दीनी लिहाज से जाते हैं, उस मंशूर पर अमल नहीं करते, हमारा तो किसी बंदे से गिला बनता ही नहीं है।
0: नहीं हम उस मंशूर को कोड करते हैं या उसको हर अमल नहीं करते, कोड करके लोगों को बताते हैं जिसमें उसने कोई अपना मफाद हासिल करना हो, ये भी बताएं।
1: सही बात, सही बात। तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑफिस से बाहर हैं, आपने कीमती टाइम दिया, मुझे पता है काम करने वाले का बंदा कितना कीमती टाइम होता है, छुट्टी का दिन है, तो ये छुट्टी के जो दिन होते हैं हमने 35, 36, 40 साल के करीब जो है अपनी आवाम के लिए दिए हैं। आज आपका भी छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी छुट्टी है, वो तो गाड़ियों में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए सुन रहे, वो तो बड़े इन्जॉय करते हैं। मैं भी जब बैठता हूँ कभी गाड़ी में, कभी दोस्तों के पास, तो जब कोई प्रोग्राम लगा हो तो मैं भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ।
0: राजा साहब, मैंने मैंने चले थोड़ी मजाकन बात भी कर लें, मैंने तो आपको छुट्टी पर ही देखा है, 25 साल
1: आप
0: मजा आ रही है।
1: देख लेना, जो कहते हैं कि हम लोगों ने किया क्या, जो मजाक की तरफ, हम जब मजाक पे आते हैं, जिन लोगों ने काम किया होता है उन्होंने किया होता है, किसी ने भी किया, अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है लेकिन उसने ज़िंदगी में कोई काम किया हो, तो उस काम की तो बंदा जो कहता है यार इसने किया हो, बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसने काम तो किया हो, ये एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, गीबत की तरफ चले जाते हैं, मुनाफ़त की तरफ चले जाते हैं।
0: राजा साहब, अगर कल को फर्ज करें मुझे कोई शील्ड मिल गई है, मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं कोई छोड़ेगा कि इसको शील्ड क्यों मिली है। ये है, इधर जो कौमे है ना, ये इधर की जो है जाम
1: देखिए
0: रहते हैं जिन
1: उसमें
0: माशरों
1: चंद
0: में,
1: लोग होते हैं, देखिए ना कहते होते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या मछली तालाब गंदा कर सकती है? क्या
0: नहीं
1: मछली
0: मछली तो नहीं कर
1: मछली नहीं तालाब गंदा कर सकती? वो कहते हैं एक मछली,
0: दे?
1: इसकी वजाहत है। इसी तरह चंद लोग होते हैं जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और उस पे जो है ना उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। हर इंसान को अपनी खूबी का भी पता है, खामी का भी पता है, दोस्ती का भी पता है और दोस्ती ना होने का भी पता होता है, मुनाफ़त का भी पता है, लेकिन ये चंद लोग होते हैं शायद इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद नहीं, बहुत यहाँ सादे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं, ये बच्चे बड़े मासूम हैं, इनकी तख्तियों, ये बच्चे पैदा होते हैं, इस तख्ती पर कुछ नहीं लिखा होता, ये हम इनकी तख्ती पर लिखते हैं और उसके बाद बच्चों को ख़राब कर देते हैं। बच्चे जो है यहाँ पैदा, बच्चा कौन पैदा होता है उसके माथे पर लिखा होता है कुछ? कुछ भी नहीं लिखा होता। आप अजान देते हैं, अगर मुसलमान पैदा हुआ तो अजान क्यों देते हैं आप? अच्छा है, अजान दी जाती है, इसी तरह क्रिश्चियन है वो उसको अपने निज़ाम से करते हैं, दूसरे मजाहब हैं वो अपने निज़ाम से करते हैं, तो मैं तो सब मजाहब की जो है इज्जत करता हूँ शायद।
0: जी, और यही ऐसे ही करना चाहिए यहाँ पर रह के। अब आप अगर आपको ये चीजें नहीं अच्छी लगती तो फिर यही है, आपको डैनिश कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप नहीं इनके कानून के मुताबिक चलना चाहते, सऊदी अरब में चलते हैं ना इनके कानून के मुताबिक, वहाँ कितनी सख्त सजाएं हैं, वहां तो आप चुप करके सर झुका के चलते हैं, जो उधर लोग जो काम कर रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भी हैं, जो कौमें वहां काम कर रही हैं, तो इधर आप क्यों जो है इनकी वायलेशन करने की कोशिश करते हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ लोग करते हैं और उन्हीं के ऊपर ये इन्होंने शिकंजा जो है ना टाइट किया हुआ है और कर रहे हैं इधर, और मजीद जो कानून लेके आ रहे हैं यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं, चाहे कोई भी है, तो आपको भी पता है इस बात का।
1: शायद जो नए कानून आ रहे हैं इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह
1: हाफिज़। समय नाज़रीन, ये थे शायद नसीम जो के आपसे बात कर रहे थे। समझ, हमारी बात जो होती है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, हमारा किसी से मुतफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं, आप अभी बात करना चाहते हैं आप अभी बात कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान साहब। नाज़रीन, है वतन पाक वतन, ये आपने मिली नगमा सुना और उससे पहले आप बातें सुन रहे थे बाकी जो हमारे मस्जिद मेहमान थे। सब नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से, चूँकि हमारा नेशनल डे और दिन होता है इसी तरह जिस तरह डेनमार्क का अपना नेशनल डे होता है, तो ये चूँकि लोकल हमारे प्रोग्राम होते हैं, सब लोग खुशी से बात करते हैं, अंदाज़ अपना अपना होता है और होना भी चाहिए हर आदमी को, चूँकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर किसी को हक है। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हुए और सारे ही कामयाब प्रोग्राम थे अपने अपने तरीके से, तो हर प्रोग्राम की तारीफ़ करनी चाहिए। जो भी प्रोग्राम करता है उसके पीछे बड़ी मेहनत शामिल होती है, चाहे थोड़े बंदे हों चाहे ज़्यादा बंदे हों, लेकिन हर प्रोग्राम में मेहनत की जाती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि सब प्रोग्रामों में किसी ने अपनी पार्टी का जो केक नहीं काटा, उन्होंने 14 अगस्त का केक काटा है। सबसे पॉजिटिव बात और खुशी की बात यह है कि सब जगहों पर केक काटेंगे और वही केक काटेंगे पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से। और एम्बेसी में बड़ा फंक्शन हुआ और उसके बाद आखिरी पाकिस्तान सोसाइटी का फंक्शन हुआ, उसके बाद 14 अगस्त के प्रोग्राम ख़त्म हो गए। हमारे प्रोग्राम तो 12 महीने जारी रहते हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया एक नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सबसे हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को देखा कि वो थोड़े लेट आए थे और हम थोड़े पहले आए थे और हमसे कुछ लोग पहले आए थे, उनसे लोग कुछ पहले आए थे। जितना जितना कोई लोग देखता है उसको ज़्यादा चीज़ें याद आती है। मेरी मुराद है मनशा। मनशा, आपको खुश आमदीद कहते हैं अदर, आपकी आवाज़ पर एक बार फिर।
2: जी शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मनशा, मैंने थोड़ी सी प्रोग्रामों की, हमने नहीं देखा प्रोग्रामों में आपको, 14 अगस्त वाले दिन भी नहीं देखा एम्बेसी में, आप हमेशा सबसे पेश पेश होते हैं।
2: जी राय साहब, मैं पाकिस्तान गया हुआ था समर वेकेशन के लिए और वापस आया हूँ मैं 10 अगस्त को, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं बहुत सारे प्रोग्राम मिस किए, लेकिन मैं प्रोग्रामों से वाकिफ रहा हूँ। यहाँ पर मेरे जाने के बाद भी डेनमार्क में इस दफा अगस्त के बहुत ज्यादा प्रोग्राम हुए, पाकिस्तान के हवाले से बहुत प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छा लगा। मेले लगे, आमों के मेले लगे, और वो 14 अगस्त का जो प्रोग्राम बैसी में हुआ बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, उसके हवाले से आपको एक जो हमारी बैसी ने भी तारीख रकम की है, किसी को शील्ड दी है तो वो खुशनसीब आप हैं, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी, आपको बैसी ने शील्ड दी है
1: बहुत शुक्रिया जी। आप लोग सब साथ का प्रोग्राम था, ये कम्युनिटी को शीट मिली है
2: जी। नहीं, आपकी जाती भी इसमें बहुत ज्यादा कारकर्दगी है जी, नुमाइंदगी है, तो इसके इसका बनता है आपका जी, डेनमार्क के लिए भी और मैसी के लिए भी आप चुने गए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: बहुत शुक्रिया मनशा, आपने हर चीज को, जाहिर है पढ़े लिखे आप नजर रखते हैं हर चीज पे, और आप अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, आप हमेशा छुट्टियों पे जाते हैं और अब बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, फिर बंदे की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, बच्चे बड़े हो गए, बड़ी क्लासों में बच्चे क्लास शुरू करते हैं, तो वो लोग होते हैं जो अपनी कम्युनिटी के कामों में हिस्सा लेते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी फैमिली सिस्टम होता है, जो भी कम्युनिटी में थोड़ा मुतर्रक होता है सियासी लिहाज से, सोसाइटियों के लिहाज से, तो डेफिनेट हर चीज़ में मेहनत होती है मनशा
2: जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है राय साहब, आप देखिए ना जी, मेहनत का समर फल भी मिलता है, तो हमने देखा कि एम्बेसी का प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एम्बेसी में बहुत सारे लोग थे, मैंने वो लाइव देखा, तो उसके बाद आपको शील्ड मिलना हमारे लिए एजाज की बात है कि आपको भी शील्ड मिली और बड़ी अच्छी खुशी हुई हमें। और उसके साथ साथ जो जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए, अल्बर्ट में प्रोग्राम हुआ, बेलरूप में प्रोग्राम हुए, स्कोवलन में प्रोग्राम हुआ, सब प्रोग्रामों से हम वाकिफ रहे, और इस दफा तो हमारी कम्युनिटी को बहुत सारे प्रोग्राम देखने का मौका मिला और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्म था, आमों की बहार भी लगी रही, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे मेले लगने चाहिए कि लोगों को हमारे जो पाकिस्तान है उसकी कदर का भी एहसास हो, उसकी वैल्यू भी नजर आए और तरीके और राग में वो देखें कि पाकिस्तान हमें कैसे मिला, तो उनको जागर करने के लिए आप जैसे लोग, सोसाइटी और जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पर हैं, प्रोग्राम करती हैं, सजाती हैं प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगता है। हर प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं, हमें दावतनामा मिल जाता है, दावतनामा मुझे अभी भी मिले थे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान था फैमिली के साथ, मैं हर साल पाकिस्तान छुट्टियां गुजारता हूँ बच्चों के साथ, तो आते हुए बस आने से कुछ दिन पहले वो मेरी तबीयत कुछ खराब हुई, तो वहाँ पहुंचा हूँ यहाँ पर
1: खराब, तो आप ही तो आपने देखा, आपकी एक्टिविटीज देखी है, आप भी फिर खाने में प्रेज नहीं करते, जगह जगह आप भी जाते रहे
2: जी। वो ऐसे था कि जी हम हर साल ही जाते हैं, तो खाने का तो जारी बात, दोस्त आए होते हैं जी, फिर दोस्तों को बुलाया, वो भी वेट करते हैं, तो सब मैंने भी शाया रखा हुआ था अपने फार्म हाउस के ऊपर, वहां पर भी मेरे पास भी 2 MNA, 3 MP, 1 वजीर और काफी और भी लोग आए हुए थे, उनका मैंने भी शाहिया दिया और बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए और मैंने खुद भी प्रोग्राम बहुत सारे किए और मुलाकातें भी बहुत सारी हुई हैं। बड़ा अच्छा लगा इस दफा, बस आते हुए राय साहब वो आने से कुछ दिन पहले ही बस वो नजर लग गए कह सकते हैं आप, ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो गए तो कोई तबीयत खराब हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजा आया, टूर बहुत अच्छा रहा।
1: मंशा आप देखें कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, लोकल मीडिया है हमारा, और उसके बाद कोई बाहर से इस दफ़ा मेहमान नहीं आया, कोई वज़ीर नहीं आया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामों में सफ़ीर मोहतरम जाते रहे और बाकी जो तंजीमात या पार्टी थी उन्होंने अपने तरीके से प्रोग्राम किया तो सारे प्रोग्राम कामयाब हो गए। क्या खर्चे करके लोगों को बाहर से बुलाना, कोई मतलब कि आप इसको किस तरह देखते हैं?
2: मैं बिल्कुल आपकी जो बात है इससे इत्तेफाक करता हूँ कि बाहर से लोगों को बुला के उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, होटल का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त और लहदा से टेंशन लो और हम पाकिस्तान जाएं तो वो पहचानते भी नहीं है, तो उनके लिए इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को प्रोग्राम चाहिए। आपने देखा कि अभी लगातार कितने प्रोग्राम हुए, सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब हुए, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोगों ने अपनी नुमाइंदगी दिखाई वहां पर। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौके चाहिए, लोगों को वो वाले जो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनैलिटी हो, कोई आप समझ लें कि वजीर हो या कोई भी हो, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेन का मौका चाहिए। तो मौके फराहम किए गए तो देखें हर प्रोग्राम कामयाब रहा, उसमें कोई भी इतना वो नहीं था कि वो एक छोटे से वो गुलूकारा थी वो इंग्लैंड से आई हुई थी, बाकी तो नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे एल्बेसो में मैंने देखे प्रोग्राम 3-4 हुए और ऐसे बेलूर में प्रोग्राम हुए, सब जगह प्रोग्राम हुए, कामयाब हुए। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, उनके लिए अपने आप को ऐसे ही मुश्किल में डालना चाहिए। हमारे लोगों को खुद ही यही लोग आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे मेहमानों को बुला बुला कर खाने खिलाएं, खर्चे करें, पैसा जाया करें, वो इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है।
1: बड़ी अच्छी बात की है मंशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे खुलकर बातें होंगी।
2: जी राय साहब आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी प्रोग्राम हुए मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की, आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे मियां मंशा जिनकी आपने बात सुनी, ये नौजवान हैं, अक्सर बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं और खुलकर बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब नाज़रीन को पढ़े लिखा अरबी और भी बहुत सारे होते हैं, हर आदमी का बात करने का अपना अंदाज होता है, तरीक़ाकार होता है, रख रखाव होता है, टिकेट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए तो आपके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी ज़बान से जुड़े रहें।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं फलस्तीन वाले, और जो इंडिया में हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, उसके बाद तो हमें फख्र करना चाहिए कि हम आजाद हैं, अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क का
1: बेशक
0: नाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो
1: बेशक
0: ये उन शहदा की भी कुर्बानियां हैं और हमें उनको भी याद रखना चाहिए। बाकी जो मैंगो है, बाकी मिठाइयाँ, वह खुशी की बात है क्योंकि हम आजाद तो आजाद हैं और अपनी अपनी खुशी का इजहार तो करना है ना हमने, जैसे भी करें। यह है कि इन खुशियों के साथ साथ उन शहदा को भी नहीं भूलना चाहिए, उनकी कुर्बानी को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें ज्यादा हमें कुछ दिखाना, ताकि हम बच्चों को पता चले कि ये पाकिस्तान ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, ऐसी आसानियों से नहीं मिला हमें, इसके पीछे एक पूरी एक तारीख है। क्योंकि हम तो जानते हैं हमारे, क्योंकि हम थोड़े हमारी अब 50+ हैं, हमें तो सारी हिस्ट्री का पता है। हम स्कूल में भी पढ़ते रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, इधर भी आके कोई अखबार वगैरह मतलब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनका उस तरह तल्लक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान का पता चले, क्योंकि उन्हें उन्हें अगर हम बताएंगे तो वो दिलचस्पी भी लेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह हमें जिस तरह कर रहे हैं, ये वाले एम्बेसी में प्रोग्राम हुआ है कल, बड़ा अच्छा हुआ है। बच्चों को उन्होंने बुलाया हुआ था, बच्चों ने अपने तराने पढ़े, मिनी नगमे पढ़े, और इस तरह करके बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। इस तरह देखना, इन्हीं बातों की वजह से लोगों की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती है। अगर आप ऐसे ही आप थोड़ा सा केक काटें, बुलाएं, तकरीर करें, पैगाम पढ़े, ठीक है, वो भी एक हिस्सा है, रवायती रवायत है पाकिस्तान की। प्राइम मिनिस्टर और जो सदर पाकिस्तान के पैगाम पढ़ के सुनाते हैं, अगर पढ़ के आप उनको भेज दें तो वो दिलचस्पी कम हो जाएगी। तो ये इसमें हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं जनाब शुएब सरवर, उनका भी बड़ा किरदार है, क्योंकि
1: बहुत
0: वो
1: ही रहा है, बहुत कितना
0: बहुत बहुत ज्यादा उनका उनका ये किरदार है कि लोगों को जिस चीज बढ़ाई है, उन्होंने लोगों को मिले हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने अपने आप उनको हटाया है, बल्कि वो छोटे छोटे प्रोग्रामों में भी गए हैं हर जगह। उनका जो रोल था वो बड़ा अहम रोल होता है, इस तरह कि उन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी को जोड़ के रखा है। उन्होंने ये नहीं किया कि ये फलां पार्टी का, ये फलां पार्टी का, मैंने उधर नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाना, मैं फलां की मैं नाम नहीं ले रहा, सॉरी। पर यह है कि उन्होंने ये इस तरह का कोई कदम उठाया ही नहीं है। उनका एक ये जो 3 साल दौर था, एक तरीकी कह रहे हैं कि इनका नाम याद रखा
1: बेशक
0: जाएगा, इनको उनको
1: बेशक
0: हमेशा अच्छे लफ्जों में लिखा जाएगा। जिस तरह हम पहले हम कुछ नाम, अब बहुत आए होंगे अम्बेसडर यहाँ पे, लेकिन हम अगर नाम लेना चाहें तो कुछ कुछ नाम हमें हमारे जबान पे आएंगे, बाकी तो हम भूल चुके हुए हैं। जी राय साहब,
2: बहुत शुक्रिया आसिफ अजी साहब, आपने लुबना की बात सुनी, आसिफ की बात सुनी, आप इनको दोनों तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे?
3: देखें जी, बाशऊर है, लुबना सियासतदान है, और वो ये अपने ये मेरा मशगला है, ये मेरा शौक है, और फिर बार बार दिल कर रहा है, मैं तो 1 साल के बाद जाता हूँ एम्बेसी।
2: जी साहब, हमें ज्वाइन कर लिया राजा शिनात अख्तर ने, जो कि राजगान वेलफेयर सोसाइटी के सदर सदर हैं, उनसे भी हम जाना चाहेंगे। उनके राय साहब ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आप राजगान वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं, चेयरमैन हैं, आप क्या कहेंगे?
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितने हमारे लिसनर हैं रेडियो आपकी आवाज के, जितने भी लिसनर हैं, हम सबको सलाम पेश करते हैं और दुआओं के साथ याद करते हैं। आपको राय साहब बहुत बहुत मुबारक जो आपको अम्बेसी से नवाजा गया है, और आप इसके हकदार हैं, क्योंकि बाबे कायदे आजम साहब का एक आप है, बर्फ हो, बारिश हो, जो भी हो मौसम, आप जरूर उनका डे मनाते हैं। तो जो करता है उसी का हक बनता है, जो नहीं करता उसका हक नहीं बनता। आप करते रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अम्बेसी वालों ने आपको नवाजा है, ये आपका हक था, और इसकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और अम्बेसी वालों के विद थैंक्स, जिन्होंने ये नोट किया होता है कि कौन कौन आदमी अपना काम कर रहा है, उनका भी शुक्रिया।
3: हाँ, बहुत अच्छे,
2: बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने बात सुनी। मेहर साहब, आपने राजा साहब की बात सुनी, आप क्या इजाफा करेंगे?
3: बाशऊर है, सियासतदान है, और वेलफेयर के काम करते हैं, खामोशी से करते हैं, ये डंडोरा नहीं पीटते अपने इलाके में, इनका एक बहुत बड़ा कद है, ये जरूरतमंदों के साथ खामोशी के साथ, नेकी वही है ना जो कहते हैं करो और दरिया में डालो, पता ना चले, अल्लाह से अजर लेना है, जिसने भी जो काम भी करना है ना अल्लाह ताला से अजर लेना है। अभी जब लुबना इलाही आपके जलसे में वहां पे मौजूद थी, इनकी कुर्बानी का जिक्र जब किया तो लोगों के आंसू निकल आए, मैं तो बाहर उठ के बाहर गली में चला गया था। टेडी भट्ट साहब, उन्होंने बताया کہ جی دو بھائی ان کے شہید ہوئے، اللہ جتنا بٹ جن کو ایڈی بٹ کہتے ہیں، میرے

0: मेरे सके, मेरे वालिद के भाई, मेरे चचा शहीद हुए हैं, ये फंक्शन ऐसे होने चाहिए। और आपने फेरा बांधा हुआ है कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के फंक्शन के लिए, जैसे राजा शिनात ने बड़ी अच्छी बात की है, अच्छी बात जहां से भी आए खुशबू होती है, मोती गुलाब की खुशबू होती है। हम बानी का, आप बानी का जो प्रोग्राम करते हैं ना, मैं ये
1: हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर लिया है मिर्जा रहमतुल्लाह बेग साहब जो के चीफ कोऑर्डिनेटर है मुस्लिम लीग नवाज के। बेग साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया आपका राय साहब।
1: बेग साहब हमारे साथ दूसरे भी आपके साथी मेहमान हैं, राजा शिनात अख्तर भी हमारे साथ हैं और असलम मेहर साहब भी हैं, आसिफ राजपूत भी हमारे साथ हैं। तो आपको अपने बड़ा प्रोग्राम किया, कामयाब प्रोग्राम किया, कसीर तादाद में लोग आए, आपकी जितने गेस्ट हैं उससे ज्यादा गेस्ट आपके आ गए, तो आपका कामयाब प्रोग्राम था, मुबारक हो आपको।
2: जी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मैं अपने मेरी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का काम है कि हम पूरी टीम ने एक होके मेहनत से काम किया और उसका नतीजा जो है ना अल्लाह ताला ने अच्छा दिया। क्यों आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था,
1: जबरदस्त। बेग साहब आपने देखा इस दफा 14 अगस्त के हवाले से बड़े प्रोग्राम हुए, आप तो ये कह सकते हैं कोई छोटा को बड़ा, को बड़ा को बड़ा को बड़ा को उससे बड़ा, तो पाकिस्तान एम्बेसी में भी आप अगली सफ़ों पर मौजूद थे और सारा कुछ आप आंखों से देख रहे थे। सफीर मोहतरम ने बड़ी मेहनत की, आप क्या कहेंगे एज ए बुजुर्ग?
2: सफीर मोहतरम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और मैं तो चाहता था कि 2 साल और भी उनको मिल जाए। हमारी कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, सिर्फ एक रह गया प्रॉब्लम कि जाती दफा हमें ना PIA बहाल करा के दे दें।
1: चले बेग साहब, ये तो बंदे के इख्तियारात होते हैं, कितने इख्तियारात होते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। जी साहब आप राजा साहब से कुछ पूछेंगे सवाल?
0: नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे रहमतुल्लाह बेग साहब ने कहा, वहाँ इन्होंने बात बताई थी कि सारे अखराजात, ये हर साल यौम आजादी भी मनाते हैं, अपनी पार्टी के हवाले से भी तकारीब करते हैं, ये अपनी जेब से किसी से कोई पैसा नहीं लेते, किसी से कोई मदद नहीं लेते, ये जनाब अपनी जेब से सारे अखराजात बर्दाश्त करते हैं, बैनर बनाने हैं, झंडे लगाने हैं, लोगों को बुलाना है, दावत देनी है, उनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा करना है, उन्हें अपने दिल की बातें करने का मौका देते हैं, ये बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। पर मेरा और आपका, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी शनाज साहब जो है वो सदर है, वो अपने इलाके के मशहूर और मारूफ लोगों को, लोगों से, अब देखें दुनिया सुकड़ चुकी है, ग्लोबल बन चुकी है, हमें हर चीज का पता चलता है, उन्हें मेरे लाले मुसे का पता है, मुझे उनके इलाके का पता है, आपको गुजर खान का पता है, अब दुनिया सुकड़ चुकी है, जहां जहां जो जो आदमी जैसा जैसा काम कर रहा है वो आंख झपकने से पहले रिपोर्ट हमें मिल जाती है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वहां पर PIA की बात की, मिर्जा रहमतुल्लाह बेग साहब ने अच्छा पॉइंट उठाया है, अम्बेसडर साहब ने वहां सामने हमारे डेनमार्क की सफीर अम्बेसडर मोहतरमा बड़ी सादा खातून थी, आई हुई 14 अगस्त के दिन एम्बेसी में सोफे पर बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड भी साथ थे, और उनको मुखातब करके उन्होंने कहा जी हम जुलकर डेनमार्क के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 35-40 हजार इनके अलावा और भी करते हैं, तो वो उनको मुखातब करके उन्होंने एक किस्म को हम नवाब बनाया, हम ख्याल बनाया, जो अम्बेसी इस्लामाबाद में डेनमार्क की है उनकी सफीर थी सामने आपके बैठे, पहले तो हमें पता ही नहीं लगा कि अम्बेसडर है, वो तो जनाब शोएब सरवर साहब ने बताया, डिस्कवर किया कि जी अम्बेसडर बैठी हुई है, और जाते मुझे शेख ने बताया
2: सफर ने। मैं साहब मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ,
0: वो साइकिल पर घर गई है, वो साइकिल पर घर गई है खातून मौजूद। हाँ जी
2: जी, मेरे
0: साइकिल पर जाते हुए देखा उन्हें घर अपने।
2: वैसे मेरे, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ।
0: बढ़ाएं बढ़ाएं
2: कि पहले ऐसे होता था, अब मेरे साथ जो है ना मुस्तकिल तौर पे 5 बंदे हैं जो हम मिलके प्रोग्राम बनाते हैं
0: जी,
2: और इसमें अगर कोई कमी पेशी हो तो हम मिलके सारे इकट्ठे पैसे देते हैं। अब मेरे अकेले का प्रोग्राम नहीं होता, ये मेरे साथ जो पांच लोग वो भी मेरे साथ हैं, वो भी पैसे देते हैं माशाल्लाह। और बड़ी खास तौर पे सेक्रेटरी साहब जो हमारे मौसम है, इनका बड़ा किरदार है हर चीज में।
0: आसर साहब है, चौधरी नजीर है, आप हैं, एडी बट है, पांच आदमी हैं। मुझे मालूम है कि जो है आप मिलजुल कर ये खराजात बर्दाश्त करते हैं।
2: तो ये मेरे साथ मास्टर यकूब साहब भी है।
0: मास्टर यकूब साहब, हाँ जी मास्टर यकूब, मैं भूल गया, मास्टर यकूब, एडी बट, मिर्जा रहमतुल्ला बेग, आसफ साहब और चौधरी नजीर साहब
3: और सादिक साहब, और उसके अलावा जो हमारे हैं खलील साहब, पैटर्न खलील साहब है, यानी कि आठ दस लोग जो है ना बर्दाश्त हम करते हैं सारे ना मिलके।
4: जी सर जी, मैं आपकी बात ये चार्ट करता हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ। इस डेनमार्क में
0: जी
4: जितने भी हमारी कम्युनिटी बस रही है, बच्चे क्या है हमारे, या हम बड़े, हमारे बुजुर्ग, या हमारे यार दोस्त राजा गफूर साहब हैं। राजा गफूर साहब का इफेक्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनके पास ये रेडियो हर किसी को मौका देते हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि राजा गफूर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया तो मैंने ये किया था। हर इंसान को ये पॉपुलर करते हैं क्योंकि आपने इस रेडियो के प्लेटफॉर्म से अम्बेसी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुल्क में जितनी भी कम्युनिटी है वो सारे अपने जेब से खर्च करते हैं और पाकिस्तान का झंडा जो बुलंद करते हैं, और इनको रिगार्ड देना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए। जितने भी हैं जिधर जिधर भी ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है। तो पाक आर्मी जिंदाबाद, अम्बेसी हमारी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज मेरे भाई जान, अल्लाह हाफिज,
0: पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करें फिर इजाजत लें।
0: आसफ साहब का, लुबना इलाही साहिबा का, मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब का, और इससे पहले जनाब इजाज बुखारी साहब भी अपनी बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं, इखलाक के दायरे में करते हैं, वो हाइपर भी नहीं होते। हम तो बूढ़े आदमी हो गए 80 बरस के, हमारे साथ कोई जज्बात भी जो है ऐसे हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी बात करते हैं बुखारी साहब, इजाज बुखारी साहब, शहनाज साहब, राजा साहब, अपने राजपूत साहब और लुबना इलाही साहिबा और दीगर। ये बड़ी अच्छी बात करके गए हैं राजा शहनाज, इन्होंने कहा कि ये रेडियो आपकी आवाज के ऊपर बार बार दावत देते हैं, हम इनकी टीम दावत देती है, असलम मेहर दावत देता है कि आए घर बैठकर बातें ना करें, आप अपने जज्बात का इजहार करें। और फिर मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, खुशी महसूस हो रही है, शोएब सरबर इतने बड़े अम्बेसडर हैं, बेहतरीन अम्बेसडर हैं, उन्होंने दिल मोह लिए हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तान कम्युनिटी के। वो छोटे बड़े को सबसे सलाम लेते हैं, ऐसे भी आए हैं जो बात करना गवारा नहीं करते थे, और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं 14 अगस्त के मौके पर। मेरे पास भी तस्वीर है, आपके पास भी तस्वीर है, पांच आदमी बैठे होते थे 14 अगस्त के मौके पर। ये जगह थी, अभी जैसे आसफ राजपूत ने कहा, कुर्सियां भरी हुई हैं, उतने ही लोग खड़े थे, उतने ही लोग बाहर फुटपाथ पर खड़े थे यार, उन्हें गाड़ियां पार करने की जगह नहीं मिल रही थी। ये जनाब क्रेडिट देना पड़ेगा। और मिर्जा रहमतुल्लाह की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि 2 साल हुकूमत पाकिस्तान इन्हें मजीद और दे दे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ये पूरी दुनिया में रोशन करने वाला इंसान है। हमारा कोई रिश्ता नहीं, और यही है कि जो भी झंडा ऊंचा करे हम उसको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और जाने से पहले उनके एजाज में हमें जो ड्यूटी दोगे हम दावत करेंगे, और प्यारी दावत करेंगे शोएब सरवर की,
2: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
3: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आज आपने हमें मदद किया, और भैया एक बड़ी अच्छी आप बात आपने क्लियर कर दी कि लोगों को ये गलत फहमी होती है शायद ये मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी जब वो बरसर इकतदार होती है तो उन्हें शायद फंड्स मिलते हैं, जैसे हम मुस्लिम लीग नून है इनको शायद फंड मिलते होंगे पाकिस्तान से, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम बल्कि जब भी मौका मिलता है, कोई भी आफत आती है, पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान ही भेजते हैं। कभी हमने कोई फंड नहीं लिया किसी पार्टी से, किसी बंदे से, बल्कि जितने भी हम अहदेदारान है यहाँ पे 8-10-12 बल्कि ज्यादा है यहाँ पे, पर कुछ लोग नहीं शामिल होते, कुछ शामिल होते हैं देते हैं, जो शामिल हो जाते हैं हम उनसे वो भी अपना हिस्सा डालते हैं, यानी कि अपने जेब से हम करते हैं सारा कुछ। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई फंड आ रहे हैं पाकिस्तान से, कोई फंड नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं आ रहा, बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं मुख्तलिफ मौकों पर पाकिस्तान पैसे भेजते ही हैं। कोई भी आफत हो, कोई भी जब वो अपील करते हैं पाकिस्तान से कि हमें इतने पैसे, हमें अपने इस लोगों की मदद के लिए पैसे चाहिए, या कोई आफत आ गई है उसके लिए पैसे चाहिए, तो हम उनकी मदद के लिए भेजते ही हैं। कभी हमने ऐसा कोई पैसा नहीं लिया किसी से भी। और दूसरी बात, जो शुएब सरवर साहब हैं, वाकई उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको हमें इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी की तरफ से भी एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे कि इनका जो इकतदार है, जो इनका जो टाइम है वो बढ़ाया जाए, ताकि जो इन्होंने काम किया है वो अपना अपना काम जारी रखें, चाहे एक साल के लिए चाहे दो साल के लिए। उनकी वाकई उनकी बड़ी मेहनत है, उनको उनको इसका सिला मिलना चाहिए। इंशाल्लाह हम जरूर लिखेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। चीफ पैटनर साहब हमारे मिर्जा बेग साहब, मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब भी सुन रहे हैं, इंशाल्लाह हम एक लेटर बनाकर भेजेंगे और उन्हें इस इनकी जो खिदमात हैं उनका नुमाया तौर पर जिक्र भी करेंगे। और देखिए उन्होंने, हाँ उन्होंने जितनी भी बातें कल की हमारी, हमारे प्रोग्राम में या 14 अगस्त 82 में, वो एक बड़ी अच्छी बातें थी। पी आई जो हमारे मसाइल हैं उन्होंने वो बार बार जिक्र करते हैं इनका, चाहे पी आई का मसला हो या नादरा का मसला हो। मैं चाहता हूँ जो थोड़े बहुत मसले रह गए हैं ये जाते जाते अपने हल करके जाएं, या इन थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है तो इसमें ये करें, ताकि इनका नाम हमेशा जिंदा रहे और हम भी इनको याद करते रहें। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने टाइम दिया।
1: साहब ने शुक्रिया अदा किया। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया।
0: मैं करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपना वॉचमैन जो है वो भेज रहे हैं चाइना के साथ, आजकल वो जो हैं वहाँ रिहर्सल कर रहे हैं खला में जाने के लिए, और फिर वो जब वॉचमैन वहाँ पे बैठेगा ना तो हमें बदनाम करने वाला ये सुन ले कि उसको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम जो बैरून मुल्क मुकीम है, हम उनको वो चीज भेजेंगे जितना सरमाया चाहे भेजेंगे, जितनी जरूरत है भेजेंगे, लेकिन वॉचमैन को चांद पर बैठाना ही बैठाना है।
1: बाकी मेहर साहब अपना आसिफ, एक खबर हमारे मीडिया के रिडार में घूम रही है, जो हमारे हमारा रिडार है उसमें आ गई है कि मुस्लिम लीग हाउस एक नया बन चुका है, जो जो ये क्या बात चल रही है, या कि वैसे ही हमारे पास कोई ऐसे रिडार में गलत खबर आ गई?
3: ये नया हाउस नहीं बना, देखें यहाँ पे पार्टी मजबूत पार्टी है, बरसर इकतदार पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, तो उसके एक देखें इतने ज्यादा प्रोग्राम कभी कोई पार्टी नहीं कर सकी। जैसे दूसरी पार्टियां कहती हैं जी हम बड़े बड़े हमारे लोग हैं, हमारे बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन वो भी इतना बकायदगी से प्रोग्राम नहीं कर जिस तरह हमारी पार्टी कर रही है। जितने मलिक सदीक साहब थे वो करते रहे हैं, उसके बाद रहमतुल्ला बेग साहब हैं वो करते रहे हैं और कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। तो ये है कि हम यहाँ पे इसलिए एक दफ्तर पहले बना हुआ है और दूसरा दफ्तर एक नया बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये नहीं है कोई नया कोई लैदा दफ्तर बन रहा है, बल्कि ये कि उसका हिस्सा है सब हमारी पार्टी जो है यहाँ पे, जो पार्टी चल रही है, जो जिन पास नोटिफिकेशन है वो एक जिस तरह पहले दफ्तर है, इस तरह ये जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने अपना दफ्तर बनाया है।
1: शामिल तो नहीं होंगी आपकी जमात में?
3: नहीं नहीं, लुबना लाई साहब नहीं है, मैं है वो अभी भी उनकी हमदर्दियाँ पहले पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उसके बाद पीटीआई के साथ हैं, उनके वो अभी मिला जुला उनका चल रहा है, तो देखें अब वो किस तरफ उनका रुख बनता है, वो अपनी मर्जी के। हाँ जी
1: बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ आपका बहुत शुक्रिया, राजा शिनाद साहब आपका शुक्रिया, बाकी भी जितने मेहमान थे। अब अगले मेहमान जो है वो चंद लम्हों के बाद हमारे साथ होंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा।
5: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: जो है इन्होंने प्रोटेस्ट की है, आपको याद है जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब आए थे, वहां पे मैंने 78 के प्राइम मिनिस्टर 78 के बाहर खड़े होके जब वो उनको वेलकम किया जा रहा था, वहां पे प्रोटेस्ट किया अपने पार्टी के साथ और कुछ लोगों के साथ। तो मैंने तो हमेशा खुल के बोला हूँ, मैं ये बड़ी आजी से कह रहा हूँ, अल्लाह पाक काम कराता है, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो अपने तौर पर अपने करियर में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि की शान में गुस्ताखी हुई थी, मैं उस वक्त 18-20 साल का था, उस वक्त जब विंस्टा को लोग सपोर्ट कर रहे थे और विंस्टा जो है ये हमारा यहाँ नाटका बंद कर रहे थे, उस वक्त मैंने विंस्टा जो है जो जो उस वक्त जो हुकूमत जो आनस खास था उसको जो है, और मैंने यहाँ के अखबार में लिखा कि मैं इसको कंडेम करता हूँ। उसके बाद मैंने तो हमेशा अपने हमेशा बड़े वोकल और बोल्ड तरीके से मैं जहाँ पे हमारी शिनाख्त की बात आई, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी की बात आई, वहां पे मैं बोला, जहाँ पे मैंने समझा कि ये पॉलिसी जो है ये डेनमार्क को भी खराब कर रही है, वहां पे मैं अपने मुल्क डेनमार्क के लिए बोला, जहाँ पे मैंने समझा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वहां पे मैं बोला, पासपोर्ट की बात हुई मैं बोला, स्काफ की बात हुई मैं बोला, कुरान पाक की बहरुवती हुई मैं बोला, कश्मीर की बात हुई मैं बोला, हमेशा मैंने बात की। इसकी मैंने बड़ी सजा भी पाई है, इसकी मैं आप देख लें कि मैंने जब इसराइल के खिलाफ बोला हूँ वो मैंने इनसे कहा कि इनकी जो लॉबी है यहाँ पे जिसका सख्त इन्फ्लुएंस है यहाँ पे उसको खत्म किया जाए, तो देखें उसके बाद मुझे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो राजा साहब ये सदारती अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता कि आप कोई 50 बंदे बुला के फंक्शन करते हैं तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, या आप खुद मांगते फिरें तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता। ये बड़ी एक लंबी प्रोसीजर होता है, एक बहुत लंबा जो है एक एक एक सिस्टम होता है, उसके तहत आप गुजरते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं और चंद लोगों को खाना खिला देना तो आप समझे कि ये आप कम्युनिटी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी अच्छे काम है, बड़े काम है, लेकिन इस पे सदारती अवार्ड नहीं मिलते। सदारती अवार्ड आपको तब मिलते हैं जब आप सियासी लेवल पे कोई हुकूमती लेवल पे आप कोई ऐसे काम हो, खा वो समाजी हो खा वो सियासी हो, लेकिन वो इतने इस लेवल के काम हो तो फिर आपको रिपोर्टें भी जाती हैं और लोग आपको नोट भी करते हैं। तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि वह तो इज्जत मत दशाओ वह तो जिल्लत मत दशाओ, अल्लाह पाक के हाथ में इज्जत है, अल्लाह पाक के हाथ में जिल्लत है, और मैं 100 बार अल्लाह के आगे झुकता हूँ, कहता हूँ या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया और तूने मुझे ये इज्जत बख्शी, मैं इस काबिल बल्कि था ही नहीं, तूने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे ये अवार्ड दिया। और मैं आज बड़े वाज़ेह अल्फाज़ों में यहाँ सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अवार्ड जो है ना, इसके असल हकदार जो है मेरे वालिद साहब है, अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, मेरे वालिद साहब की बरज़ख की जिंदगी को आसान फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का एक बाग बनाए। असल में तो मेरे वालिद साहब जो है इस अवार्ड के हकदार हैं और ये अवार्ड जो है मैं उन्हें डेडिकेट करता हूँ। मेरे वालिद साहब जो है और बहुत ग्रेट इंसान थे, उनका अखलाक आपके सबके सामने है, क्या जबरदस्त अखलाक था उनका, वो माशाल्लाह इतने जहीन और पढ़े लिखे थे। मेरे वालिद साहब जो है वो किसी से डरते नहीं थे, उन्होंने हमेशा जुल्म का मुकाबला किया और डंके की चोट पे किया और हमेशा जीते। मेरे वालिद साहब जो है वो जब कहीं खड़े हो जाते थे तो कहते थे पुत्र दुनिया इधर से उधर हो जाए, खड़े हो जाओ जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, हमें तो ये तालीम मिली है शुरू से, तभी तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके नक्शे कदम पे चलूं। और मैं इसलिए मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ, इसलिए मैं कश्मीर के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं अपने जो मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है मैं उसके ऊपर बोलता हूँ। हमारे वालिद साहब जो थे वो तो उनकी तो उनका लेवल ही और था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो है इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। और मुझे सबसे ज्यादा राजा साहब मैं आपको बात बताऊं, मुझे खुशी इस बात की होती है कि उनका नाम जो है ना अमर हो गया है। वो जो चाहते थे कि पहले उनका बेटा जो है यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट भी बना, कितने लोगों को तकलीफ भी हुई, कितने लोगों ने लॉबियों ने इसके खिलाफ काम भी किया, कुछ भी हुआ, अल्लाह पाक ने इज्जत दी। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे इस नवाजा इस मेडल से और इस चीज को रेकग्नाइज किया, मेरे काम को रेकग्नाइज किया। मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो अमर हो गया। अब जो मर्जी को कहता रहे, जो मर्जी को बोलता रहे, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत देनी होती है किसी का पाप भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक के हाथ में इज्जत है, अल्लाह पाक के हाथ में जिल्लत है, और अल्लाह पाक जिसको देना चाहे वो कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। सो मैं वेरी आईजी में बहुत ही आजिज़ी में, बहुत ही हम्बल होके मैं कहता हूँ कि मैं, यकीन करें मुझे अपने आप को ये मेडल मिलने से सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे वालिद साहब का जो एक ख्वाब था, मेरे वालिद साहब का जो एक एक कोशिश थी, और मेरे वालिद साहब का अब नाम जो है ना वो रिकग्नाइज हो गया है, हुकूमत पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया है, मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो अमर हो गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही हम्बल और बहुत होके बहुत ही आजिज़ी में मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इतना प्यार दिखाया, इतना साथ दिया, हर इलेक्शन में साथ दिया, हर बार। जाहिर बात है बीच में हमेशा आप सियासतदान होते हैं, उसमें आपके खिलाफ भी लोग होते हैं, और जिसकी मुखालफत ना ना हो तो आप समझे वो मुनाफिक है। हजरत अली का कौल है कि जिसके दुश्मन ना हो, जिसके जिसको सब पसंद करते हो तो समझे वो मुनाफिक है। और अगर आपने किसी को परखना हो ना, अब ये देख लें कि उसके मुखालफीन कौन है, जितने उसके मुखालफीनों से बंदा पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो हमारी यहाँ की जो कम्युनिटी है उसने क्या कहते हैं बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया है। हाँ कुछ यहाँ की जो रेसिस्ट पार्टीज हैं वो मुखालफत करती है, यहाँ की जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो मुखालफत करती है, और उसके साथ एक दो कम्युनिटी के लोग होंगे जो जिनकी अपनी राय होगी मुखालफत करती है, लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह पाक से कि मुझ में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे वालिद साहब का ये जो ख्वाब था, मेरे वालिद साहब के नाम को जो ऑनर किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैं बेहद खुश हूँ इस बात से। मैं घर पे हमेशा फैमिली को भी ये कहता हूँ, जाहिर बात है किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुद ही की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है टेनिस सियासत में, अभी भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वालिदैन के, वालिद साहब के जो सबक था, जो तालीम था, उसमें मैंने तालीम थी उसमें मैंने कोशिश की चलने की, और मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि मुझे अल्लाह पाक ने वसीला बनाया कि नाम जो सिद्दीक नाम है वो पाकिस्तान की स्टेट ने जो है रिकग्नाइज किया है, जो मेरे वालिद साहब के लिए बड़ी ऑनर की बात है। और मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो क्या कहते हैं स्टेट लेवल पे रिकग्नाइज हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अल्लाह पाक ने जो है मुझे वसीला बनाया है, और ताकि मेरे वालिद साहब का ये नाम इस तरह हो। आज वो होते वो बहुत खुश होते, तो मैं कब्र पे गया उनके, तो वहां भी मैं मेडल लेके गया, और ये जरा एक इमोशनल बात है मैं बता देता हूँ। वहां पे मैंने वालिद साहब को मेडल दिखाया, मैंने कहा वालिद साहब देखें जी आज आपका बेटा मेडल ले आया, आज आपका नाम सिद्दीक जो है वो आज पाकिस्तान की जो जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो पाकिस्तान की जो स्टेट है, आज उनकी जो कॉरिडोर्स हैं उन पे आज आपका नाम जो है वो गूंज रहा है, आपको रिकग्नाइज्ड है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए और उनकी उनकी जो जो जो ये अब सफर है बरज़ख का उसको आसान फरमाए। तो बात यही थी कि जो मेडल है ना, कुछ लोग जो है जिनको शायद तकलीफ होगी या सियासी मुखालफीन है।
1: सिकंदर इस पर हम बात करेंगे, गो के आपने टाइम मुझसे मांगा था कि आप मुझे टाइम दें, मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपको टाइम देंगे, चूँकि मैंने किसी और से भी वादा किया होता अपने मेहमान से, तो आपका टाइम है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आपका जवाब देना आपका जमहूरी हक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि आज हमारे पास वो टाइम नहीं है। तो आपने अपने मेडल की वजाहत की, थोड़ी सी वजाहत मैं भी करता चलूँ। आपको याद होगा कि कभी इस हिस्ट्री में हुआ कि पार्लियामेंट में जाकर किसी को शील्डें दी गई हों, पार्लियामेंट में जाकर किसी को रिकग्नाइज किया गो? क्या इस हिस्ट्री में कभी हुआ? वो हमने मैंने जो है एलो के साथ मिल के, स्टेट मिनिस्टर थे पॉल न्यूरप उस वक्त, बड़े पावरफुल वजीर आजम थे, हमने उनसे ऑफिशियल मीटिंग की, जिस तरह दो मुल्कों के सरबरा आपस में बात करते हैं, इस तरह की हमारी मीटिंग थी, मिनट्स लिखे गए, तो ताकि लोगों को पता होना चाहिए। या वाजपेयी साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त के वजीर आनस जो थे, उन्होंने स्टेट डिनर दिया था, उस स्टेट डिनर में मैं मौजूद था। कभी इस तारीख में हुआ कि कोई स्टेट डिनर में इस तरह को गेस्ट बनाओ? कभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बंदा वो गिनने शुरू करते तो बहुत सारी बन जाती हैं, या मेडल कोई किसी को वैसे नहीं दिए जाते, उसमें बहुत सारा उसके पीछे काम होता है, इसलिए मेडल दिए जाते हैं। सिकंदर, मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, आपने कहा था कि मुझे टाइम दे, मैं कुछ चीज़ों पर बोलना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर अगले हफ्ते टाइम दे दूंगा।
0: ठीक है राजा साहब, जिन चीजों में मैं बोलना चाह रहा था वो पे तो अभी बोला ही नहीं हूँ, चले इंशाल्लाह
1: इसके अंदर मैं आपको टाइम दूंगा, जो है ना, आपको पता है हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, फिर हमारे लिसनर बहुत सारे सुन रहे होते हैं, मेरा वादा है आपका जमहूरी हक है, मैं आपको टाइम दूंगा।
0: ठीक है, और राजा साहब मैं आपको एक आखिरी बात ये जरूर कहूंगा कि आपकी शील्ड को लेके ना काफी धुआं उठा है, और मैं आपको यही कहूंगा जो जलने वाले हैं उनको जलने दें, तो इस वक्त जिनको दर्द आपकी शील के ऊपर दर्द हो रहा है उनको दर्द होने दें, अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है, आपने बहुत काम किया है, आपको ये मेडल मिला है, आप इसके हक, आपको ये शील्ड मिली है, आप इसके हकदार थे, और जो जलते हैं उनको जलने दें।
1: सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपका टाइम आपको मिलेगा। सामान्य नाज़रीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक जो कि सितारा इम्तियाज हैं, जिनको मिला, हमें शील्ड मिली, हमारी कम्युनिटी को शील्ड मिली है। ये देखें हर चीज़ होती है, हम कम्युनिटी के लोग हैं, एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, और हमें बहुत सोच समझ कर बातें करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, चूँकि लाइव प्रोग्राम में होते हैं, तो लाइव प्रोग्राम में आप कितना कुछ, किसी को सामने बैठा हो तो बंदा कोई इशारा कर लेता है, कोई बात कर लेता है, तो इस तरह जो बात सारी होती है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: बन जाए कि जहां पर इस तरह के मौके बने कि जहां पर एक कोई भी जो कम्युनिटी है वो इस तरह अनबैलेंस हो जाए, और जब अनबैलेंस होगी तो यकीन उसके फिर नुकसान भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा जी कि बुनियादी तौर पर इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, उसमें एक फरीक हम खुद भी हैं जो हमारे खिलाफ कानून है, जो वो जब सख्त बनते हैं तो उसमें एक हिस्सा हमारा अपना भी। जी राय साहब,
1: शाह साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया। शाह साहब, देखें, एक हीरोज़ होते हैं, हीरो से सब लोग मोहब्बत करते हैं। जिस तरह डेनमार्क के बादशाह हैं, सब मोहब्बत करते हैं, बेलोस मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा मलका से मोहब्बत करते हैं। ये सारी चीज़ें जो अपनी जगह दुरुस्त है ना, वो कुछ सियासत में हिस्सा लेते हैं, वो मोहब्बत करते हैं। शाह साहब, जब हम देखें मस्जिद हैं, सारे लोग जुम्मा पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ के अपने घरों में आ जाते हैं। अब पहली दफ़ा या इससे पहले भी थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब मैं जुम्मा पढ़ने गया मस्जिद वेस्टर्वो गेट में, तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने सारा खुतबा जो है वो 14 अगस्त के हवाले से जो है बड़े मेहनत करके और बड़े खलूस से जो है उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से बात की है। और शाह साहब दिल बड़ा खुश हो गया, और उन्होंने किसी बंदे का जिक्र नहीं किया, किसी मतलब है कि मस्जिद को नहीं कहा गया मस्जिद वाले ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से किया। उसके बाद जो छोटी मोटी तकरीब हुई, क्या नाम है, बंद उनकी लाइब्रेरी में, इसी तरह और अदारों में भी ये तकरीबात हुई। तो शाह साहब, ये तकरीबात जो ये दिन वो होते हैं जहाँ कायद अज़म रहमतुल्लाह अलामा इकबाल रहमतुल्लाह चौधरी जो है वो रहमत अली साहब, उनका ऐसी चीज़ों का जिक्र होता है, इल्मी गुफ्तगू की जाती है। लेकिन शाह साहब, उसके बाद अगर उसी गुफ्तगू को जो बिलफर्ज मेरे घर का लीडर है, मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ूँ, तो शाह साहब बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे शाह साहब?
0: जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मुझे खुशी हुई कि जहाँ पर आपने जुमा पढ़ा वहां पर जो डॉक्टर साहब हैं, मैं समझता हूँ वैसे भी वो बड़े हर लिहाज से काबिले तारीफ हैं। उनके खिताबात बड़े खूबसूरत होते हैं, मैं खुद उनका बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छा खिताब फरमाते हैं वो, अल्लाह पाक उनके इल्म अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। तो मैं समझता हूँ ये जो इस तरह के, चूंकि ये जो मौजू है इसका ताल्लुक हमारी वतनियत से है और वतन से मोहब्बत के साथ है, इस तरह के मौजूदात हैं जो वो हर जगह पर होने चाहिए, और उसका जो बुनियादी मकसद एक याद दहानी करवाई जाती है कि हम बैसी कौम, हमारे पास एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, और हमें उसके मुताबिक अपनी जिम्मेदारी, हम उस पर क्रिटिसाइज कर लेते हैं, लेकिन ये कि सबसे पहले देखने की जरूरत यह है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, और उस मुल्क में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, उस मुल्क के मस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं, क्योंकि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो हमें अपनी जानिब से ये कोशिश भी करनी चाहिए, और यकीनन हमारी दिली दुआ भी है, हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि हमारा एक खुद मुख्तार वतन है जिसका अपना दस्तूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम ममालिक की पहली और वाहिद एटमी कुव्वत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है जो वो दिफाई सामान की खुद तैयारी करता है, चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर है जो तैयार है वो बनाया, अल खालिद टैंक बनाया, अल जरार बनाया टैंक, यानी बहुत वो सारे वो भी हैं, उनसे भी आंखें बंद नहीं की जा सकती। वहां पर इंसाफ नहीं है, अदलिया है जो वो महकूम है, इदारे हैं जो वो कुछ बहुत तगड़े हैं, और जिन इदारों का काम कुछ और है, काम उनकी जिम्मेदारी कुछ और है, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। जो जो चीजें माइनस हैं उनको भी मानना चाहिए, जो अच्छाइयां हैं उनको भी मानना चाहिए, और जहां तक आपने कहा कि अपने अपने लीडर की तरफ जरूर, हमें अपने जहां जहां किसी इंसान की अपनी मोहब्बत है वो अपने सियासी कायद के साथ जरूर रखे, लेकिन हम सब का मकसद है जो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से मोहब्बत है जो वो हमारा हमारे दिल की आवाज होनी चाहिए। ये इसी तरह है कि जिस तरह एक ही जगह को रास्ते मुख्तलिफ जाते हैं, हमारा टारगेट है जो वो सबका वो पाकिस्तान है, कोई किसी सियासी जमात की तरफ से होकर जाता है, किसी दूसरी जमात की तरफ से अगर वो होकर जाता है, अपने अपने कायदीन से जरूर मोहब्बत रखें, लेकिन मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि अब जहां पर आपको अपने लीडर से अपने कायद से मोहब्बत है, तो इसी तरह जब दूसरे को भी उससे अपने कायद से मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम करें, अपने कायद से मोहब्बत जरूर करें। वो किसी बुजुर्ग ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे थे जी कि अपना छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना, यानी जो जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो करें, और जो किसी और को पसंद है उसको ये हक जरूर दें कि वो उसको पसंद करे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जो वतनियत है ये जरूरी है, हमारी मसाजिद से अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो वतन

0: बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कुछ दिनों पे एक ऐसा प्रोग्राम डिबेट करेंगे कि ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में जो इश्क की और ये बातें चलती है, जो हमारे कल्चर के बहुत बड़ी तोहीन है, खुसूसी तौर पे हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, हमारे शहरों में ऐसा नहीं होता, हमारे घरों में नहीं आता होता, कोई लाखों में एक अगर केस हो जाता है तो उसके मतलब ये नहीं कि हम उनको ड्रामों में पेश करके लोगों को ये बताएं कि भाई हमारा कल्चर क्या है।
1: तो शाह साहब,
0: अब
1: आपने देखा इस तरह, आप चले थोड़ा सा बात को मैं थोड़ा सा वजन डाल दूं, जिस तरह ये बात मुफ्ती कवि साहब आ जाते हैं वो जो सोशल मीडिया पे, इस तरह के जो मुख्तलिफ किरदार आ जाते हैं, तो शाह साहब लोग देखे ना उनको मिलियन के हिसाब से लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, तो फिर आप लोगों की मैंटेलिटी का शाह साहब आप अंदाजा कर लें। ये तो कोई कानूनी पाबंदियाँ होनी चाहिए, जो आइन के अंदर चीजें तय होती हैं उस आइन का भी जो है हमें पास कर रखना चाहिए।
0: जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं जरा चलता हूँ थोड़ी सा बात को दूसरी तरफ लेके, खालिद भट्ट साहब से पूछते हैं, इन्होंने अपना अपना पूरा जवानी जो है वहां पे उडनसे में गुजारी है, और एक वक्त था कि उडनसा जो था वो डेनमार्क का सबसे बदनमा और बदतरीन शहर कहलाता था वालमूस की वजह से दूसरे, लेकिन इन्हीं की सियासत खालिद भट्ट साहब ने खुद ही वहां पे सियासत की
1: हमेशा,
0: और लोगों ने
1: उडनसे में एक्टिविटीज रही और कोपेनहेगन से मेहमान जाते रहे, ये लोग बुलाते रहे
0: जी, और इनसे पूछा कि वहां पे अब जो इतने लोग अच्छे हो गए हैं उसकी वजूहत क्या है। भट्ट साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा बताएं कि हालात कैसे वहां पे बेहतर हुए।
1: शाह साहब, हालात बेहतर हुए या बंदे तब्दील हुए?
2: नहीं, बंदे तो वही हैं, बंदे तब्दील नहीं हुए, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हमारी जो डिटेक्शन कमून है, हमारी जो डिटेक्शन कमून है, जो हमारी वो जिसको आप कहते हैं मेयर और सिटी काउंसिलर वगैरह, तो उसमें ये है कि सोमालियन जो है वो भी अब सिटी काउंसिलर हैं, दो या तीन, उसके बाद तुर्की एक है, अरबी है, ईरानी है, तो ये मल्टी जो कल्चरल जो हो गया ना वो काउंसलर, और फिर जो मेयर हमारे सोशल डेमोक्रेट पार्टी के हैं, तो वाल्समूस का जैसे शाह साहब ने जिक्र किया तो वाल्समूस में बहुत चेंजिंग आई है। वाल्समूस में तो ये है कि आपको पता होगा कि ये जैसे उसमें भगवान और इधर कोपेनहेगन में आपका नेरो ब्रो वगैरह, तो वहां तो कमून जो है उन्होंने बहुत बड़ा वो बजट और प्रोजेक्ट है कि बहुत सी बिल्डिंगें जो है ना जी, ये गेटों खत्म करने के लिए उन लोगों ने बिल्डिंगें गिराई हैं, और गिरा के जो लोग हैं उनको मूव किया है, और कुछ लोगों को साल से दो दो साल के लिए मूव करके फिर दोबारा उन लोगों ने वो क्या कहते हैं रेनोवेट और रिकंस्ट्रक्शन किया है। तो ये उनका जो मेन जो टारगेट है वो ये गेटों खत्म करना, तो फिर ये था कि वो बड़ा ना गेटो होने की वजह से वो बड़ा एक ना लोकल समूह होता है कि वो आइसोलेट हुए हुए थे, तो उसको जरा बहुत ना खुला किया गया ताकि ना वो इससे जो क्राइम वगैरह ना कम हुआ है। पहले था कि जैसे आपको देखा होगा, आपने देखा होगा हर जगह डेनमार्क में बड़ी ग्रीनरी होती है, बड़े दरख्त वगैरह होते हैं, तो उस वजह से ना को क्राइम वगैरह जो है ना वो ढका छुपा था। अब ये है कि अगर आप डिंड से आए देखें तो उन्हें वाल्समूस सारा ओपन कर दिया है। अब जो दरख्त है वो दरख्त भी जो मोस्टली जो है ना उनको वो छांटी करके ताकि जो है ना पुलिस या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड इनके लिए अब इजी जो है ना हो गया वो पहुंचना। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें लोग जो हैं वो भी तावन कर रहे हैं, और जो आपका ये जो बलदियाती जो सारा ढांचा है उनके तावन से, और वरना मेरे हाल में मुमकिन नहीं था। तो लेकिन
1: जैसे ये सारी चीजें आप जो डेनिश तरीकाकार से जो सिस्टम से कानून कायदे से कर रहे हैं, यहाँ पर ये पाकिस्तानी सियासत का तर्ज अमल इसमें नहीं होता, बंदे का इंसान का अपना यहाँ का जो जमहूरियत का तरीकाकार होता है उससे ये सारी चीजें अचीव की जाती हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने, किसी का यहाँ बोर्ड नहीं लगा होता जैसे पाकिस्तान में, ये फलां गली फलां सड़क जो है वो तो कीर शाह साहब जो है ना ये मुकम्मल करेंगे, ये फलां नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल बजाएगी, सिस्टम है उस सिस्टम के तहत हर चीज जो है ना वो काम कर रही है। तो बाकी अल्लाह का बड़ा करम है कि जब से मैं डेनमार्क आया हूँ, ये मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह का फजल करम है कि वतन से मोहब्बत है, हम वतनों से मोहब्बत है, और जैसे अभी आपने पहले कहा कोपेनहेगन आना, सफारत खाने आना, कोपेनहेगन के जो इवेंट होते हैं उनमें शिरकत करना ये मेरे लिए बड़ी फखर की बात है।
1: उस वक्त कोई इश्तिहार लिखा जाता था जब पब्लिक में जाता था, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर पे तो लिखे नहीं जाते थे, हाथ से लिखे जाते थे, उसमें ओडेंसे वालों का और कश्मीरी बिरादरी का जिक्र ना हो तो वो प्रोग्राम का

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने की, एक और ज़्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाज़ बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाज़ के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।